listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास।
2: हेलो,

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pie, free cash vouchers.
2: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

देखिए, बिगड़ने की बात हो और आपकी कशिश जो है यहाँ पर ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बिगड़ी हुई बच्ची जो है यहाँ पर आपकी कशिश ही है और कूल भी। हाँ जी, आपकी कूजी छोरी आपकी कसू जो है आपके लिए जो है बिंदास मॉर्निंग यहाँ पर लेकर आ गई है, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप लोग? मैं तो काफी बढ़िया हूँ। एंड पता नहीं क्यों मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं जितना भी गर्म पानी पी लूँ, जितनी भी जल्दी उठने की कोशिश कर लूँ, आने के बाद जो सबसे पहला आपको गुड मॉर्निंग कहती हूँ वो पता नहीं क्यों खराब आवाज में ही होता है। आप मानिए मेरी बात, मेरी आवाज़ इतनी ख़राब है नहीं, अच्छी आवाज़ है, तभी मैं आरजे बनी हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों जब आपसे सुबह सुबह बात करने के लिए आती हूँ तो आवाज़ ऐसी हो जाती है। बल्कि आई किड नॉट, मैं जो है गर्म पानी पीकर आई हूँ, मैं जो है अच्छे तरीके से उठ गई थी, उठ के बाद वॉक करने के बाद नहाने के बाद यहाँ पर आई हूँ, तो ऑब्वियसली बहुत टाइम हो गया है मुझे उठे हुए, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ नॉर्मल नहीं हो पा रही है। सो अगर आप लोगों के पास इसका कोई इलाज है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी आज का दिन आपका और ज़्यादा अमेजिंग बनाने वाली हूँ। देखो यार, वीकेंड है और वीकेंड पर हम फन ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस जो है हम बढ़िया वाला जो है फन करने वाले हैं, आपको बहुत सारी अमेजिंग खबरें जो है वो मैं बताने वाली हूँ। एंड मुंबई सपनों का समंदर जो है गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर सुनील चौहान की आवाज में और एमयूए बोंटाई की आवाज में, लेकिन हम जो है कतर सपनों का समंदर जो है वो करने वाले हैं। तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर हमारा अगला गाना जो है वो एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: बस यही गाना जो है इस वक्त विंटर्स गा रही है कतर के लिए कि यार अब तो हम तुम्हारे हो ही जाएंगे, देखो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। विंटर जैसी विंटर नहीं आई है लेकिन मौसम जो है वो ठंडा ठंडा सा होने लग गया है। एंड कल जो है बादलों को देखने के बाद आप सबकी फोटोज में मुझे ऐसा लगा कि यार फाइनली विंटर जो है वो हमें भी याद कर रहा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कसूश एंड सुबह आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। इस वक्त टेम्परेचर जो है दोहा में हो रहा है 28 डिग्री सेल्सियस, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो रहने वाला है 38 डिग्री सेल्सियस एंड लोएस्ट टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार बढ़िया मजा आएगा जब आज जो है ये जो 28 डिग्री सेल्सियस है ये हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाएगा। देखिए सपने में देखती रहती हूँ कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जो है मेरे इन सपनों में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स भेज के, क्योंकि मैं आते हुए भी देख रही थी कि बादल बहुत प्यारे दिख रहे हैं, तो क्यों ना बादलों की पिक्चर जो है वो मुझे शेयर करें। 3311063 पर आप जो है मुझे प्यारी प्यारी बादलों की फोटोज जो है वो भेज सकते हैं ताकि इस बिना खिड़की वाले स्टूडियो से जो है मैं बाहर का नज़ारा तो देख सकूं। सो जल्दी से फोन उठाइए, फोटो खींचिए एंड मुझे भेज दीजिए। कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये इंजॉय कीजिए एंड कहते रहिए जियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

कभी आपको वक्त मिले ना तो एक बहुत ही प्यारा सा जो है इंटरव्यू है, पॉडकास्ट है, बल्कि अगर मैं बोलूं तो डिस्कशन है, जिसमें जो है इस मूवी के सारे कैरेक्टर जो है, जितने भी लोग म्यूजिक में जो है वो रहे हैं, वो सब एक जगह बैठकर बात कर रहे हैं एंड इतनी अमेजिंग स्टोरीज जो है वो बता रहे हैं इस गाने के लिए, कि बहुत ही मजा आ जाता है यार। जावेद अख्तर साहब, AR रहमान साहब, आमिर खान एंड मूवी के जो डायरेक्टर थे, वो सब लोग साथ में बैठकर म्यूजिक के बिहाइंड द स्टोरी जो है वो बता रहे हैं एंड अमेजिंग लगता है। सो एक बार जरूर से चेक करना। बाकी अभी तो चेक कर लेते हैं कि हमें किस किस के मैसेजेस आए हैं। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कसोशन शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। आज वीकेंड है सो एंजॉय करेंगे हम। जुल्फी जी ने एक बहुत ही प्यारी सी फोटो भेजी है, बहुत ही अच्छा सा कोट भेजा है। उसके बाद जैसा जी ने जो है एक बहुत ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग जी लिखा है। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? शशिकांत पाटिल जी ने भी एक बहुत ही प्यारी सी गुड मॉर्निंग वाली इमेज भेजी है। अबरार जी ने भी हमें बहुत ही प्यारी सी फोटोज जो है वो भेजी है गुड मॉर्निंग वाली, गुड मॉर्निंग जी। एंड संदू जी का मैसेज आ चुका है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप योर डे, अरे रे बाप रे इतना सारा मैसेज मैं कैसे पढ़ूंगी। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप योर डे फ्लोज इजिली, योर माइंड स्टेज क्वाइट एंड योर हार्ट फील्स फुल, गॉड ब्लेस यू ऑल, जियो बिंदास, हरपाल संधू फ्रॉम दुकान। थैंक यू सो मच संधू जी, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे आपका मैसेज। एंड निजामुल्ला जी ने हमें जो है मैसेज किया है, स्माइल इन द मिरर, डू दैट एवरी मॉर्निंग एंड यू विल स्टार्ट टू सी

a big difference in your life. देखिए मुझे जो है इनकी बात थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा अच्छी लगी है क्योंकि मैं भी सुबह यही करती हूँ, कोई मेरी तारीफ करे ना करे मैं खुद की तारीफ जो है जरूर कर देती हूँ. अजीत जी ने अभी अभी मैसेज किया है एंड उन्होंने कहा है गुड मॉर्निंग अजीत जी, कैसे हैं आप? एंड अगर आप अभी जो है गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो क्या आप मुझे बाहर की फोटो खींच के भेजेंगे कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है? और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे बस इतनी सी इल्तजा है कि यार इस वक्त बादल कैसे हो रहे हैं, जरा अच्छी सी बादलों की फोटो जो है एस्थेटिक वाली वॉलपेपर वर्दी फोटो मुझे भेज दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे थोड़ा सा. फिलहाल जो है अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, लव शब्द एक किशन खुराना से. वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए गाना और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो फिर दस.

0: विशाल मिश्रा जी आपको कह रहे हैं कि जरा नाचो नाचो नाच के दिखा दो। अभी मेरा जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ सा लग रहा है, क्योंकि वीकेंड आ गया है, नींदें जो है वो पूरी नहीं हो रही है। बस यही एक मौका होता है जिसमें नींद पूरी पूरी कर सकती हूँ मैं। वैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कल जो है मैं बहुत ज्यादा सोई हूँ, तो मैं ओवर स्लीप होने की वजह से जो है अब थका हुआ महसूस कर रही हूँ। ये क्या है, मैं कम सोती हूँ तो मेरी बॉडी को दिक्कत होती है, मैं ज्यादा सो जाती हूँ तो मेरी बॉडी को दिक्कत होती है। ये बॉडी है या बुआ जी है, इसको पूरा टाइम दिक्कत ही होती रहती है। वैसे अगर कोई बुआ जी है जो मुझे सुन रही है तो आई एम सो सॉरी, ये जोक है बस, ठीक है, ऐसे दिल पे नहीं लेते, ठीक है, मेरी कोई बात को दिल पे मत लीजिएगा सिवाय अच्छी अच्छी बातों की, ठीक है। तो फिलहाल अच्छी अच्छी बातों पे आ जाते हैं। एंड आप लोगों को मैंने कहा था कि यार मुझे जरा बाहर का मौसम दिखा दो, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यारी प्यारी फोटोज भेजी। अजीत जी ने गुड मॉर्निंग कहने के बाद अपनी कार से बड़ी सी प्यारी सी फोटो भेज दी, अच्छी सी डैशबोर्ड के साथ वाली, थैंक यू सो मच। संधू जी कैसे हैं आप, एंड उन्होंने भी बहुत ही प्यारी जो है फोटो भेजी है। जुल्फी जी ने तो हमें ऑलरेडी भेज ही दी थी, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से जो है मैं बाहर का नज़ारा जो है वो देख पाती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड बाकी जो है थोड़ी सी देर में हम जो है ब्लैक बोर्ड स्टोरी वाला सवाल आपसे पूछने वाले हैं, जहाँ पे आपका जनरल नॉलेज जो है वो टेस्ट करेंगे। जैसे सुदेव कहा करते थे कि चेक करेंगे कि आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और कशिश से कितने ज़्यादा स्मार्ट है। वैसे अभी किसी और ने भी हमें कुछ ना कुछ मैसेज भेजा है। ओके इदरीस जी आपने जो इदरीस जी ने अभी तो नहीं खींची लेकिन पहले की खींची हुई फोटो भेज दी है, जो कि बहुत ही अमेजिंग दिख रही है। इदरीस जी आप क्या क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं अपना वॉलपेपर जो है आपके नाम कर दूं कि सिर्फ आपकी खींची हुई फोटोज ही मेरे वॉलपेपर पे लगेंगी। थैंक यू सो मच आप सबके लिए। फिलहाल ऑल ऑफ सॉन्ग ऑफ द RRIP रेडियो सेट पर वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय कीजिए एंड कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Song of the Hour. Ye gana.

0: Olive, 106.3 FM, Gio Bendaz.
1: शॉपिंग तो सभी करते हैं, पर जब बिना पॉकेट खाली किए ट्रॉली फुल हो जाए तो
2: नेस्टो लेकर आया है मैजिकल फिगर्स फेस्टिव सेल। यहाँ प्राइसेस पर चलेगा जादू। ग्रोसरी शॉपिंग हो या फेस्टिव शॉपिंग, सब मिलेगा सबसे कम प्राइस में।
1: लेकिन जल्दी कीजिए, क्योंकि ये मैजिकल ऑफर चलेगा सिर्फ 15 से 18 अक्टूबर तक, यानी सिर्फ 4 दिन।
2: तो बस प्लान बनाइए और पूरी फैमिली के साथ पहुँचिए नेस्टो हाइपर मार्केट अलगराफा।
1: नेस्टो, मोर हैप्पीनेस, मोर क्वालिटी, लोअर प्राइसेस।
3: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit Savify.co today.
4: It's back! LG and Rumble's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Evios.
5: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry! Offer valid till 31st October.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.
3: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

बहुत ही अमेजिंग सा प्यारा सा क्यूट सा गाना सी स्कोर की आवाज में आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलएफएल। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कूल थी छोरी, आपकी कशिश है ना, आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। एंड जो है वक्त आ गया है आपसे सवाल पूछने का और आपकी इंटेलिजेंस को चेक करने का। सो जल्दी से अपना फोन उठाइए एंड इस ईजी से सवाल का जवाब जो है वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और कशिश से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। एंड आजकल सवाल तो बहुत ही ईजी होने वाला है यार, अगर आपके साथ आपके बच्चे जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त एंड वो थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में भी है तो भी वो इस सवाल का जवाब आसानी से दे देंगे। आपको बस मुझे ये बताना है कि RBC और WBC का फुल फॉर्म क्या होता है एंड ये हमारी जो है बॉडी से रिलेटेड है, इसीलिए मैं क्रिकेट से कोई रिलेट करके नहीं बताएगा, ठीक है। बताइए मुझे 3311063 पर आकर कि इन दोनों वर्ड्स का जो है फुल फॉर्म क्या है, वर्ड्स नहीं बोलेंगे यार, नहीं क्या बोलेंगे ये भी मुझे बता देना। सो RBC WBC का फुल फॉर्म मुझे बता दीजिए आप मैसेज करके 3311063 पर। फिलहाल अल्फाज गाने का नाम है, आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जी बिंदास।

0: मर्जी हो या ना हो आपसे मिलने के लिए तो देखो मैं आऊंगी ही आऊंगी। सात समुंदर पार करके यहाँ पर आ गई हूँ तो भी आऊंगी। वैसे सात नहीं आते हैं समुंदर इंडिया और कतर के बीच में, लेकिन फिर भी बोलने वाली बात है तो मैंने बोल दी। हाँ जी, आपकी कुछ छोरी आपकी कसूर जो है यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए लेकर बिंदास मॉर्निंग। एंड आपसे जो है एक सवाल पूछा था मैंने थोड़ी देर पहले और आपको देने थे उसके जवाब। मैंने आपसे पूछा था कि RBC और WBC का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने हमें सही सही आंसर दिए हैं। रीवा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, जाहिद जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, एंड अवीज खान जी ने जो है वो भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। थैंक यू सो मच। एंड आंसर क्या है वो मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास एक और मौका है मुझे आंसर देने का। सो 3311063 पर आपकी कसूस को मैसेज कर दीजिए, फुल फॉर्म बता दीजिए RBC एंड WBC का, एंड देखते हैं आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट और कितने ज्यादा स्मार्ट है। एंड बेसिक चीजें जो स्कूल में पढ़ी थी वो अभी भी याद है या नहीं याद है। फिलहाल जबरदस्त हिट गाना आ रहा है रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

यार इस गाने में ना एक अलग टाइप की वाइब है। एंड अगर अभी तक आपने बंटी एंड बबली जो सबसे पहले वाली थी, द ओजी बंटी एंड बबली है, अभी तक नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखो यार, क्या तो बढ़िया मूवी है। छोरी आपकी कशिश है ना, आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखो यार, थोड़ी सी देर पहले जो है मैंने आप सबसे बस यही पूछा था कि जरा मुझे बताओ कि जो है RBC एंड WBC, गिराती पड़ाती रहती हूँ यार चीजें में, सो WBC एंड RBC का वो जो है फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे सही सही आंसर दिया है, लेकिन सबसे पहले जो है वो हमें आंसर दिया था रेहान जी ने, एंड उसके बाद जो है इदरीस जी का मैसेज आया था, इदरीस जी ने एकदम क्लेम ही कर दिया था कि यार सबसे पहले मैंने ही आंसर दिया, बट नहीं, आपसे पहले भी सही आंसर देने वाले थे हमारे पास, बीच में जिन्होंने आंसर दिया था उनके नाम मैंने आपको बता दिए थे। टीना जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, लियाकत जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, एंड रिजवान जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, एंड आंसर है रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, बिल्कुल सही सही आंसर है सबका, थैंक यू सो मच। एंड यार इसी बात पे मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया तालियों वाला गाना जो है वो आप सबके प्ले करना चाहिए, इसलिए ततड़ ततड़ गाना जो है यार आपके रेडियो सेट पर, सो जो है मस्त वाइब करते हुए ये गाना एंजॉय कीजिए। मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: पूरा परिवार हमेशा कितना अच्छा लगता है ना, उसकी साड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद आती हैं।
1: और पिछले दिवाली में उनके पति ने जो पहना था वो कमाल का था।
0: और उनकी बेटियाँ उन कढ़ाई वाले लहंगे में कितनी खूबसूरत लग रही थी।
2: पर मम्मी मुझे तो इस बार शरारा सेट चाहिए।
1: लगता है आज मुझे गाड़ी लेकर पूरे शहर के चक्कर लगाने पड़ेंगे।
0: हमें तो बस कल्याण सिल्क्स जाना है, वहाँ पूरे परिवार के लिए त्योहारों का बेहतरीन कलेक्शन है।
3: इस त्योहार सीजन में एक ही छत के नीचे पूरी करे हर ख्वाहिश। आइए कल्याण सिल्क्स, बरवा विलेज, दोहा।
4: It's back! LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Evios.
5: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry! Offer valid till 31st October.
6: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit Savify.co today.
7: शॉपिंग तो सभी करते हैं, पर जब बिना पॉकेट खाली किए ट्रॉली फुल हो जाए तो
8: नेस्टो लेकर आया है मैजिकल फिगर्स फेस्टिव सेल। यहाँ प्राइसेस पर चलेगा जादू। ग्रोसरी शॉपिंग हो या फेस्टिव शॉपिंग, सब मिलेगा सबसे कम प्राइस में।
7: लेकिन जल्दी कीजिए क्योंकि ये मैजिकल ऑफर चलेगा सिर्फ 15 से 18 अक्टूबर तक, यानी सिर्फ 4 दिन।
8: तो बस प्लान बनाइए और पूरी फैमिली के साथ पहुँचिए नेस्टो हाइपर मार्केट अलगराफा।
7: नेस्टो, मोर हैप्पीनेस, मोर क्वालिटी, लोअर प्राइसेस।
9: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
10: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pie, free cash vouchers.
11: In association with
12: Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

हाँ जी, आपकी कशिश हूँ मैं और आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। अब देखो यार, जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि कशिश यार अब इतना टाइम हो गया कतर में, सो अब जो है अब तो ऐसा नहीं रहा कि यार बहुत सारी जगहें बची हुई हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो अब कहाँ जाने का सोचा है? लेकिन तो मैंने जो है बहुत सर्च किया है, मेरे दोस्तों ने भी मुझे सजेस्ट किया कि कहाँ जाना चाहिए, तो इस वीकेंड का मेरा प्लान तो हो गया शॉर्ट, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ मीडिया मजलिस म्यूजियम में। तो मेरे एक दोस्त ने जो है मुझे एक रील शेयर की थी जहाँ पे बहुत ही अमेजिंग स्क्रीन एंड स्टार्स वाला जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर मिलेगा, एंड ये अक्टूबर 5th से लेकर जो है 21st जनवरी तक जो है चलने वाला एजुकेशन सिटी दोहा में, एंड संडे टू थर्सडे जो है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आप यहाँ जा सकते हैं। एंट्री बिल्कुल फ्री होने वाली है एंड कोई बुकिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये एक जगह है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सो मैं तो यहाँ पर जाने वाली हूँ। यहाँ पे ना स्टनिंग इमर्सिव एग्जीबिशन होने वाला है, जहाँ पर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जो शायद हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, एंड लेज़र लाइट्स एंड लेज़र शो वो सब भी होने वाला है। तो देखो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ यहाँ जाने के लिए। अगर आप यहाँ पे पहले जा चुकी हो तो मुझे बताना कि यहाँ जाना वर्थ है या नहीं है, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए अपने फ्राइडे जो है वहाँ पे लगा कर पहले, तो मुझे बताइए 3311063 पर कि क्या आप इस म्यूजियम में गए हैं। एंड फिलहाल जो एक अमेजिंग वाला गाना बेबी डू डाई डू से आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करके आइए और मैं जरा चाय पी के आती हूँ, उसके बाद आपको जरा ऑलिव अपडेट्स जो है वो हम देंगे। स्टे ट्यून और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.
2: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

वैसे तो जो है मैं आपको बताने वाली थी ऑलिव अपडेट्स के बारे में कि क्या कुछ खास चल रहा है हमारे कतर में, लेकिन वीकेंड की वाइब है एंड सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते मैं जो है एक शादी के कार्ड पे पहुंच गई, जिसके बाद मुझे जो है ऐसा लगने लग गया कि यार ऑलिव अपडेट्स तो मैं आपको कुछ गानों के उस पार भी जो है बता सकती हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात जो है ये तो अभी ही बतानी पड़ेगी। क्या है ना कि ऐसी चीजें ना मेरे अंदर रह ही नहीं पाती है, थोड़ी सी गॉसिप की आदत है ना मुझे। सो क्या हुआ है कि सोशल मीडिया पे एक शादी का कार्ड काफी सरफेस कर रहा है, कुछ टाइम पहले भी ऐसा कार्ड जो है वो सरफेस किया था जहां पर दूल्हा दुल्हन ने जो है मेंशन कर दिया है कि जब हमारी एंट्री हो रही हो या जब हमारी फोटोज हो रही हो, कृपया अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ज्यादातर फोटोज को जो है ज्यादातर ब्राइडल एंट्रीज को, ग्रूम के एंट्रीज को या कपल एंट्रीज को जो है खराब कर देते हैं बच्चे इधर उधर भाग के। एंड मुझे जो है सच में एक बात जो है रियलाइज हुई है कि आप कोई भी शादी कहीं की भी देख लो, चाहे आप इंडिया की शादी देखो, पाकिस्तान की शादी देखो, चाहे आप कतर की शादी देखो, या आप कहीं की भी शादी देख लो, बॉलीवुड की शादियां देख लो, आपको एक चीज जरूर दिखेगी, आपको भागते हुए बच्चे दिखेंगे। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि बच्चों को भागने में क्या मजा आता है, एंड ये जो है चलते फिरते ऐसे वैसे भागेंगे, ये रेल बना के भागेंगे, ये इधर उधर भागेंगे, टकराएंगे, गिरेंगे, ये सारे बच्चों को भागने में इतना मतलब क्यों आता है, और बस इसी से बचने के लिए कि फोटोज में वीडियोज में बच्चे भागते हुए इधर उधर ना नजर आए एंड फिर लास्ट में सबका मुंह ना बन जाए कि अरे हमारे बच्चों को तो आपने साइड कर दिया था, इसीलिए उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि अपने बच्चों को जो है थोड़ा कंट्रोल में रखे जब भी फोटोज या वीडियोज हो रही हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिलहाल जो है इसी के साथ एक वेडिंग एंट्री सॉन्ग जो है वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, सो जरा जो है वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना जो है इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और क्या ये जियो बंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास लुलू फ्री ट्रॉली 2026 इज हियर। Yes, your entire shopping bill could be absolutely free. Just 3 simple steps. Shop in the supermarket section at any Lulu branch. Stay tuned as our automated system randomly selects a winner right at checkout. Win. If you are selected, your entire bill is zero. Gone free on the house. Shop at Lulu and win at Lulu. Lulu Hypermarket, where every trolley brings a surprise.
1: Attention Qatar, the all new GAC GS7 2027 ab Domesco GAC showroom mein available hai. This premium SUV is perfect for city drives aur aapki outdoor glamping adventures ke liye. Get an incredible 1020 km combined range, plus customize the animated LED headlights. All new GAC GS7 2027 starting from just 129,900
2: riyal. To intezar kis baat ka? Book your test drive today. Visit the GAC showroom at East Industrial Road. Call 800-8123.
3: The Joy Wali Diwali by Joy Alukas is back.
4: जी हाँ, हर बार की तरह इट इज द बिगेस्ट एंड बेस्ट डील इन टाउन फॉर ज्वेलरी परचेजेस दिस फेस्टिव सीजन। डायमंड और प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी की खरीद पे पाएं फ्री 24 कैरेट गोल्ड बार्स और कैश वाउचर्स। 8 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड कॉइन्स खरीदें एट एब्सोल्युटली जीरो मेकिंग चार्जेस। मच मोर अवेट्स यू एट जॉय अलकास दिस फेस्टिव सीजन। ऑफर्स केवल 8 नवंबर 2026 तक।
3: TNC apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
5: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲੋ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।

0: फुल ऑन ब्रेकअप वाइब, एकदम ब्रेकअप वाला गाना जो है वो हमने चला दिया है, लेकिन ये सिर्फ गाना एंजॉय करने के लिए है, दिल पे लेने के लिए नहीं। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है अमेजिंग बनाने का जो है बीड़ा मैंने अपने नाजुक कंधों पे उठा लिया है। सो आपकी मॉर्निंग को बेसिकली बिंदास बना रही हूँ मैं। एंड जो है आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि यार देखो मौसम जो है वो बदल रहा है, सो अपने हेल्थ का ध्यान रखो। मैं तो हूँ पता नहीं क्यों नहीं रख पा रही हूँ, खुद सबको चिल्ला चिल्ला के बोलती रहती हूँ कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, लेकिन मैं खुद नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि अभी मैं आपसे जो है एक मिनट लगातार बात करूंगी एंड मुझे खांसी आनी शुरू हो जाएगी। एंड ये सब आप लोगों ने जो है नोटिस भी किया होगा, लेकिन मैं तो अपने जो है हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाई। एंड कतर में मैं नई हूँ तो मुझे जो है बदलते मौसम का अंदाजा नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री जो है उसको फुल अंदाजा है। तो इसलिए मिनिस्ट्री ने जो है आप सबको आगे आने वाले बदलते हुए मौसम के लिए तैयार होने का जो है एक यू नो गो अहेड दे दिया है कि ये मौसम बदलने वाला है, तैयार हो जाओ। सो जितने भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, हेल्थ वाइज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है तैयार हो जाओ। सो मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि देखो क्योंकि रेनी सीजन आ सकता है, अभी आने वाला है, सो उसके हिसाब से अपने घर को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है रेडी रखना, क्योंकि बारिश होने वाली है। सो मैं तो देखो काफी एक्साइटेड हूँ, कतर में बारिश मैंने आज तक नहीं देखी है, सो मुझे देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। बाकी अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखो। इस वक्त मैं देख रही हूँ कि हर दूसरे इंसान को जो है वायरल हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है। सो यार प्लीज अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। माना यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल इतना ज्यादा करोगे। बाकी अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, हेल्दी खाना खाओ, वॉक पे जाओ, क्योंकि अब मौसम जो है वो अच्छा हो रहा है, तो आपको जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे टेम्परेचर अच्छा लगेगा, तो आप बाहर अब वॉक के लिए जॉग के लिए जा सकते हो। मैं खुद नहीं जा पा रही हूँ, मैं खुद कोशिश करूंगी, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके साथ साथ मैं भी थोड़ा सा यू नो एक्टिविटीज कर सकूं। बाकी अमेजिंग वाला गाना जो है कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आपकी रेडियो से, इस पर जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय करो। प्रियंका चोपड़ा जी की आवाज में एक्सोटिक गाना है, एंड अगर ये गाना आपको अच्छा लगे तो अभी जो सीजन आने वाला है इस पे अगर आप रील्स बनाए कतर में, तो ये गाना आप पीछे बैकग्राउंड में जो है वो लगा सकते हैं। एक सजेशन टाइप का है, लेना है तो आप ले सकते हैं, वरना आप बोल सकते हैं कशिश अपना सजेशन अपने पास रखो, प्यार से बोलिएगा पर। ओके, बाकी हाय हेलो गुड मॉर्निंग कुछ तो कह दीजिए मुझे अगर व्हाट्सएप पर 3311063 पर। वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए गाना और कहते रहिए आपकी कशिश के साथ। जियो बिंदास
1: रेडियो ऑल पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ

0: listening to Radio Colive 106.3 FM.
1: शॉपिंग तो सभी करते हैं, पर जब बिना पॉकेट खाली किए ट्रॉली फुल हो जाए तो
2: नेस्टोल लेकर आया है मैजिकल फिगर्स फेस्टिव सेल। यहाँ प्राइसेस पर चलेगा जादू। ग्रोसरी शॉपिंग हो या फेस्टिव शॉपिंग, सब मिलेगा सबसे कम प्राइस में।
1: लेकिन जल्दी कीजिए, क्योंकि ये मैजिकल ऑफर चलेगा सिर्फ 15 से 18 अक्टूबर तक, यानी सिर्फ 4 दिन।
2: तो बस प्लान बनाइए और पूरी फैमिली के साथ पहुँचिए नेस्टो हाइपर मार्केट अलगराफा।
1: नेस्टो, मोर हैप्पीनेस, मोर क्वालिटी, लोअर प्राइसेस।
2: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
4: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pie, free cash vouchers.
3: In association with
2: Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

मतलब शाहरुख खान की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से एक जो है ये गाना है. एंड ये फिल्म जो है स्टोरी वाइज मुझे उतनी ज्यादा खास नहीं लगी, थोड़ी सी ज्यादा ओवर द टॉप थी. लेकिन लेकिन लेकिन जो फ्लर्ट, जो रिज अगर मैं कहूँ शाहरुख खान जी का इस मूवी में देखने को मिला है, वो अलग लेवल पे था. हाँ जी, आपकी एक खूबसी छोरी आपकी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है लेकर आपके लिए बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग का जो यू नो एंटरटेनिंग बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठाई है. एंड कोई जो है मुझे सोशल मीडिया पे कह रहा था कि यार कशिश आपकी कंधे देखने पर इतने नाजुक तो नहीं लगते, बॉडी बिल्डर लगते हैं, तो आप ये क्यों कहती रहती हो कि आपके नाजुक कंधों पर आपने जो है वो इतना ज़्यादा भार उठा रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है. सर, एक बार आप सबको एंटरटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार भी तो देखिए. इसके सामने तो खली जी के जो जो जो कंधे हैं वो भी नाजुक फील होंगे, तो मेरे तो कंधे सच में नाजुक है. एंड यार देखो, मैंने ना ये वाली बात कई बार कही है कि यार मैं देखने में लगती हूँ काफी स्ट्रांग कि भाई ये तो जो है बहुत ज्यादा सॉलिड बंदी है, लेकिन मैं इतनी हूं नहीं. ठीक है, मेरे अंदर अभी वो नाजुक सी लड़की छुपी है, बस वो बहुत ज्यादा छुप गई है. थोड़ा सा एक्सरसाइज करूंगी तो वो निकल के आ जाएगी बाहर. ठीक है, पर अगर आपको ज्यादा ऐसे लग रहा है कि यार कशिश नाजुक कंधे तो नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बस देखिए कि इतने सारे लोग जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, आपके साथ आप मुझे सुन रहे हैं एंड आपके साथ हजारों लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं. मुझे इंडिया से मैसेज आते हैं, मुझे ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आते हैं, मुझे अलग अलग जगहों से भी मैसेज आते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे जाकर आप हमारा जो रेडियो ऑलिव है वो कहीं से भी सुन सकते हैं दुनिया में. सो देखिए, इतने दूर दूर से लोग सुन रहे हैं, तो उनके एंटरटेनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोटी मोटी बात थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ी बात है ना. इसीलिए देखो यार, आपके एंटरटेनमेंट का जिम्मा इन कंधों पर है, तो इन कंधों को तो मैं अभी नाजुक ही कहना चाहूंगी. बाकी एक चीज है जो मैं आपसे बताना चाहती थी, मेरे नाजुक कंधे हो या ना हो, मेरा दिल जरूर नाजुक है, ये बात बात पे जो है टूट जाता है. सो आहान पांडे ने अनीस पड्डा जी के बर्थडे पे जो है, यानी अगर आपने सैयारा मूवी नहीं देखी है तो मैं बता दूं कि ये सैयारा में दोनों का लॉन्च हुआ था. एंड अनीस पड्डा जो है अब नेशनल जो है क्रश जो है वो बन गई थी इंडिया का, एंड इंटरनेशनल क्रश भी बन गई आफ्टर उनका हेयर कट. वो हेयर कट उन्होंने कराया और उसके बाद लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि बोल रहे ओहो कितनी खूबसूरत है ये. एंड आहान पांडे ने उनके बर्थडे पे जो है फुल ऑन स्टोरी वोरी नहीं लगाई है, पूरा का पूरा पोस्ट किया है एंड बहुत लंबा चौड़ा अच्छा सा कैप्शन लिखा है प्यारा सा. एंड सारी लड़कियां बोल रही हैं देखो ये होता है, हमें बर्थडे पे गिफ्ट नहीं चाहिए, फैंसी डिनर नहीं चाहिए, डेकोरेशन नहीं चाहिए, हमें बस ऐसा कोई पोस्ट करने वाला चाहिए. तो यार देखो, अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे पोस्ट करने पे आप क्यों शर्मा रहे हो? इन्होंने तो अपना जो रिलेशन है वो ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं किया है कि हम जो है वो डेट कर रहे हैं या ऐसा कुछ है. इन्होंने तो सिर्फ जनरली क्योंकि फर्स्ट मूवी साथ में की है तो एक दूसरे को ऐसे ही पोस्ट कर रहे हैं. कितनी प्यारी फोटोज डाली है, कितना प्यारा कैप्शन लिखा है और एफर्ट्स आप चैट जीपीटी से लिखवा के दे दीजिए हमें बस, लेकिन नहीं हो रहा है आपसे. कोई बात नहीं, आपके लिए एक अमेजिंग वाला गाना है मर्डर 2 मूवी से, ये एंजॉय कर लीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: त्योहारों में अनीता का पूरा परिवार हमेशा कितना अच्छा लगता है ना, उसकी साड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद आती हैं।
2: और पिछले दिवाली में उनके पति ने जो पहना था वो कमाल का था।
1: और उनकी बेटियाँ उन कढ़ाई वाले लहंगे में कितनी खूबसूरत लग रही थी।
3: पर मम्मी मुझे तो इस बार शरारा सेट चाहिए।
2: लगता है आज मुझे गाड़ी लेकर पूरे शहर के चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: हमें तो बस कल्याण सिल्क्स जाना है, वहाँ पूरे परिवार के लिए त्योहारों का बेहतरीन कलेक्शन है।
4: इस त्योहार सीजन में एक ही छत के नीचे पूरी करे हर ख्वाहिश। आइए कल्याण सिल्क्स, बरवा विलेज, दोहा।
5: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
6: सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
8: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pie, free cash vouchers.
9: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cash back. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

जितने रंग आपको दिख सकते हैं वो सारे मैं जो है वारना चाहूंगी अनीत पड्डा और आहान पांडे पे, क्योंकि कितने ज्यादा क्यूट चीजें कर रही है सोशल मीडिया पे। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कूल सी छोरी, आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। देखिए, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आहान पांडे ने कुछ दिन पहले अनीत पड्डा को उनके बर्थडे पे पूरा का पूरा सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो डेडिकेट कर दिया। सबसे ज्यादा क्यूट फोटोज जो है उन्होंने अनीत की डाली एंड एक बहुत अच्छा लंबा चौड़ा जो है नोट उनके लिए लिखा। एंड वो अभी जो है ये उन्होंने ऑफिशियल भी नहीं किया है कि वो लोग जो है साथ में है, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ। बट ये इतना कुछ किया, अब सारी लड़कियां कह रही है कि यार इतना मन से नहीं लिखा जा रहा आपसे, तो चैट जीपीटी से एआई से पूछ के हमारे लिए इतना कुछ लिख दो, हमारी फोटो ऐसे पोस्ट करवाना तो हम भी जो है डिजर्व करते हैं। लेकिन यहीं पे गर्ल्स ये जो है आहान जी रुके नहीं है, इन्होंने जो है स्पॉटिफाई पे एक पूरी प्लेलिस्ट जो है वो अनीत बर्थडे के नाम से बना दी है। सो अनीत बर्थडे के नाम से अब आपको स्पॉटिफाई पे मिल जाएगी। मतलब आप जो है अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको एक गाना डेडिकेट कर देगा या एक जो है रील पे आपके लिए एक गाना लगा देंगे, लेकिन इन्होंने आहान जी ने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डेडिकेट कर दी। तो देखिए, अगर आप जो है अपनी पार्टनर को जो है थोड़ा खुश करना चाहते हैं, अगर वो आपके साथ हैं और ये सुन के डिसअपॉइंट हो गई हैं, तो मैं बोल रही हूँ अभी उनको कॉल कीजिए, या अगर वो साथ में बैठी हैं तो ये जो अगला गाना मैं सुनाने वाली हूँ ये उन्हें डेडिकेट कर दीजिए। बस बोल दीजिए और मुझ पे भरोसा रखिए, मैं अच्छा गाना ही सुनाऊंगी, है ना। सो 3311063 पर अगर आप अपनी पार्टनर को ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं तो एक बार मुझे यस लिख कर भेज दीजिए। बाकी ये गाना वॉल्यूम बढ़ाकर उनके साथ एंजॉय कीजिए एंड कहिए जियो बिंदास। Radio

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.
3: In association with Choose Bima, third part of liability today. Stay claim free to enjoy 7% cashback. Visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

0: त्योहारों में अनीता का पूरा परिवार हमेशा कितना अच्छा लगता है ना, उसकी साड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद आती हैं।
1: और पिछले दिवाली में उनके पति ने जो पहना था वो कमाल का था।
0: और उनकी बेटियाँ उन कढ़ाई वाले लहंगे में कितनी खूबसूरत लग रही थी।
2: पर मम्मी मुझे तो इस बार शरारा सेट चाहिए।
1: लगता है आज मुझे गाड़ी लेकर पूरे शहर के चक्कर लगाने पड़ेंगे।
0: हमें तो बस कल्याण सिल्क्स जाना है, वहाँ पूरे परिवार के लिए त्योहारों का बेहतरीन कलेक्शन है।
3: इस त्योहार सीजन में एक ही छत के नीचे पूरी करे हर ख्वाहिश, आइए कल्याण सिल्क्स, बरवा विलेज, दोहा।
4: Hi there friends, this is DJ Sukit. DJ Sukit. You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Jio Bindas.
3: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: थी।
1: क्या क्यूट तरीका है, कितना ज्यादा क्यूट तरीका है ये कहने का कि भाई आपसे जो है थोड़ा सा जो है लव सा हो गया है, अब क्या किया जाए। हाँ जी, मैं हूँ आपकी गुलजी छोरी, आपकी कशिश है ना, आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाने का बीड़ा एंड रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, कॉफी विद करण का जो है नया सीजन एंड होपफुली तो नहीं, अनहोपफुली होपफुली पता नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन लास्ट सीजन ये होने वाला है। उसका फर्स्ट एपिसोड जो है वो आउट हो गया है, जहाँ पे करिश्मा एंड हमें जो है सलमान भाई जो है वो देखने को मिले, एंड उन लोगों ने सच में बढ़िया बातें की है यार। मेरे को सच में कुछ मूवीज है जिनका रिकैप आ गया है, कुछ गाने हैं जिनका रिकैप आ गया है, बीवी नंबर वन मेरी आंखों के सामने दौड़ रही है। एंड लिटरली यार, ये 90s के टाइम में हम कितने सारे अलग अलग कपल्स की बात करते हैं, हम माधुरी और सलमान की बात करते हैं, हम शाहरुख और काजोल की बात करते हैं, हम करिश्मा एंड गोविंदा की भी बात करते हैं, लेकिन हम करिश्मा कपूर एंड सलमान खान को एज अ पेयर जो है कभी अप्रिशिएट ही नहीं कर पाए, मुझे ऐसा लगता है। बल्कि इस जब एपिसोड में आप दोनों को देखेंगे, दोनों की केमिस्ट्री कितनी ऑन पॉइंट है, दोनों जो है बातें कितनी अच्छी कर रहे हैं, एंड करण जौहर ने बिल्कुल सही दाव जो है ये खेला है सलमान खान को अपने फर्स्ट एपिसोड में बुलाने का। अब जो है आगे के लोगों की लिस्ट जो है उस पर काफी बात चल रही है। वैसे ये जो है सबसे ज्यादा वोटेड है कि शाहरुख खान एंड आर्यन खान जो है वो हमें साथ में इस काउच पे बैठते हुए दिखने वाले हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हो कि आपको, मतलब चाहने से तो कुछ नहीं होता खैर, बट आपको क्या लगता है कि कौन है जिसे इनवाइट करना चाहिए करण जौहर जी को, या कौन आने वाला है? बेसिकली लास्ट सीजन है तो कोई नॉर्मल सा जो है गेस्ट तो होने नहीं वाले हैं, अमेजिंग लोग ही होने वाले हैं। तो बताइए मुझे 3311063 पर। फिलहाल जबरदस्त हिट गाना जो है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर ही गाना एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जी बिंदास।
2: अब सुनिए

सुखविंदर सिंह की आवाज में एक अमेजिंग वाला गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑल ऑफ एयर। मैं हूँ आपकी कूसी छोरी, आपकी कजुशन, आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा था। अब देखिए यार, कतर में ना आर्टिस्ट के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है वो शुरू हो रही है, एंड जैसे जैसे हम नवम्बर में जो है प्रवेश करने वाले हैं, एंट्री मारने वाले हैं, वैसे ही कुछ प्लान हैं अलग चैप्टर के। सो एक नया जो है रुबिया कतर जो है वो लॉन्च होने वाला है, जहाँ पर इस नवम्बर में जो है 120 से ज्यादा आर्टिस्ट जो है वो आने वाली है 45 कंट्रीज से, यानी कुछ बहुत ही आर्टिस्टिक सा जो है वो होता हुआ दिखने वाला है। सो यार तैयार हो जाइए ऐसी बहुत सारी आर्टिस्टिक चीजों के लिए। एंड यार देखो, हम जो है शो के एंड पे पहुंचने वाले हैं, एंड अभी तक आप लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि आप लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हो इस वीकेंड पर, या आप लोगों के क्या प्लान्स है। 3311063 पर मुझे आप मैसेज करके बता सकते हो कि यार इस वीकेंड पे आपने क्या प्लान बना रखा है। बाकी मैंने जो है वो तो अपना प्लान आपसे शेयर कर ही दिया था। एक अमेजिंग वाला गाना जन्नत 2 से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ओलिव शॉर्ट ब्रेक।
0: हैला जादू।

लेकिन अब हमें जो है दूर होना पड़ेगा, तभी तो मैं जाऊंगी और फिर कल जो है आपके पास वापस आ पाऊंगी। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कूसी छोरी, आपकी कशिश, और आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग। एंड ये कहूँ कि आपके लिए लेकर आ गई थी मैं बिंदास मॉर्निंग, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय बोलने का जो है वक्त हो गया है, तो मैं यहाँ से चलती हूँ। बस जाते जाते वही कहूँगी जो हर रोज कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यार मतलब हमारी बॉडी के लिए हाइड्रेशन एंड हमारी स्किन के लिए हाइड्रेशन दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पानी पीना और सनस्क्रीन लगाना तो बिल्कुल भी आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। ओके, एंड अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, कल आपसे मुलाकात होगी शाम को 4 बजे द टेक शो में, जहाँ टेक्नोलॉजी की हम बातचीत करेंगे मस्ती के, मजे के, तड़के के साथ। सो जो है अभी फिलहाल वॉल्यूम बढ़ाकर हमारा जो अगला गाना आ रहा है उसे आप इंजॉय कीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड रही 106.3 रेडियो ऑलिव पर। और बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी कहना हो तो वो कहने के लिए जो है आप 3311063 पर हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम हैंडल को भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं रेडियो ऑलिव के। मुलाकात होगी अब कल, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड।

0: मेरे छोटे एड्रिक्स आएंगे
1: आएंगे नहीं आ गए
2: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में फास्ट इजी और रिलायबल विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ

0: सो आज का जो दिन है दिस इज 15th of October और आज ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे. सो इसका मेन मोटिव जो है वो लोगों को याद दिलाना है कि सोप और पानी से सही तरीके से हाथ धोना छोटी सी आदत जरूर है लेकिन हेल्थ के लिए इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है. अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, हाथ तो हम सब धोते हैं. बिल्कुल, लेकिन असली सवाल है कि क्या हम सही टाइम पर सही तरीके से हाथ धोते हैं, खाना खाने से पहले या फिर खाना प्रिपेयर करने से पहले, और हाथ विजिबली डर्टी हो. इन मोमेंट्स पर हैंड वॉशिंग खासतौर पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. सिर्फ पानी से हाथ धोना इज नॉट सफिशिएंट बेसिकली. और एक मजेदार बात बताऊं, हम फोन को दिन भर में ना जाने कितनी बार टच करते हैं. फोन किचन में भी जाता है, बेडरूम में भी जाता है, बाहर भी, और कभी कभी तो मतलब हम ना चाहते हुए बार बार फोन को टच करते हैं. सो आज का दिन हमें एक बेसिक लेसन याद दिलाता है, हेल्थ हमेशा बड़ी बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी हैबिट से ही बनती है. अच्छी हाइजीन सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन नहीं आसपास के लोगों का ख्याल रखने का भी तरीका है. सो आपकी ऐसी कौन सी छोटी सी हैबिट है जिसे आप जानते हैं कि फॉलो करना चाहिए लेकिन अक्सर भूल जाते हैं, चाहे वो पानी पीना हो, टाइम पे सोना हो, हाथ धोना हो या फोन को साफ करना हो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 7331103. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

सो बेसिकली बॉलीवुड की जब भी बात आती है कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनका स्क्रीन पर सिनेमा की दुनिया में एक अलग ही पहचान है. तो टुडे इज 15th of October, राइट? सो अली फैजल का बर्थडे है सबसे पहले. मिर्जापुर के गुड्डू पंडित, उनको सब जानते हैं. मतलब आपने एक बार उनका नाम लिया, सब उनको जानते हैं. सो करियर में उन्होंने अपने कॉमेडी से लेकर इंटरनेशनल सिनेमा

0: क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: In association with Nesto Hypermarket, now open at Old Passport Office, Karafa.

सो अब चलते हैं बॉलीवुड की तरफ, क्योंकि वीकेंड आने वाला है और मूवी लवर्स की वॉच लिस्ट में कुछ नया ऐड करना बहुत जरूरी है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। यामी गौतम की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी आ रही है नई नवेली, कल ही आ रही है। और फिल्म में यामी के साथ आपको अच्छे एक्टर्स दिखने वाले हैं और कहानी में हॉरर के साथ कॉमेडी का फ्लेवर है। अब हॉरर कॉमेडी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोनर है, क्योंकि हॉरर आपको डराने की कोशिश करता है और कॉमेडी उसी टेंशन को तोड़ देती है, लेकिन दोनों का बैलेंस बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर कॉमेडी बहुत ज्यादा हो गई तो डर गायब हो जाता है, और अगर हॉरर ज्यादा हो गया तो ऑडियंस हंसना भूल जाती है। सो वैसे यामी गौतम को हमने ना अलग अलग तरह के रोल्स में तो देखा है, अब देखना यह होगा कि इस फिल्म में वो ऑडियंस को डराती है, हंसाती है, या दोनों एक साथ करती है। और एक बात, कभी कभी फिल्म की सक्सेस सिर्फ बड़े स्टार्स से या भारी प्रमोशन से नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट वर्ड ऑफ माउथ, ऑडियंस रिव्यू और कहानी के कनेक्शंस जो होते हैं वो क्या है। अब आप मुझे बताइए कि हॉरर कॉमेडी आपको पसंद है या फिर थ्रिलर या फिर रोमांटिक ड्रामा, और कल के आपके क्या प्लान्स हैं, क्योंकि कल है फ्राइडे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, नंबर इज 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट बुक्स, मतलब जब तक किताब की बात ना हो ना तब तक ऐसा लगता है कि दिन कंप्लीट नहीं हुआ. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बुक्स, जहां पर हर कहानी हमें किसी दूसरी दुनिया में लेकर चली जाती है, लेकिन कुछ कहानियां हमें अपनी ही दुनिया के बारे में नए सवाल पूछने पर बहुत मजबूर करती है. सो आज बात करते हैं ऑथर वेरोनिका रूथ की. अब उनकी एक किताब है द सिक्स्थ फिक्शन, जो कि कल अगर मैं बात करूं तो आप पढ़ सकते हो क्योंकि वो इसी महीने की स्टार्टिंग में रिलीज हो गई. वेरोनिका रूथ को आप उनकी बेस्ट सेलिंग किताबों से जानते होंगे. यहाँ पर हम लेकर चलते हैं आपको एक ऐसी सोसाइटी में जो अलग अलग फैक्शंस में बांटा गया है, और इन फैक्शंस की पहचान ब्रेवरी, सेल्फलेसनेस, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी और काइंडनेस से जुड़ी हुई है. अब जरा सोचिए कि आपको अपनी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ एक क्वालिटी से चुननी पड़े तो आप क्या चुनोगे? इंटेलिजेंस, काइंडनेस, ब्रेवरी, या फिर कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि आपको डिफाइन कर सकता है? क्योंकि लाइफ में हम सब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं. कुछ लोगों को इंटेलिजेंट हो सकते हैं लोग, लेकिन हर सिचुएशन में ब्रेव नहीं हो सकते. कोई लोग काइंड हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी अपने लिए स्टैंड लेना भी जरूरी हो जाता है. सो यू टेल मी कि अगर आपको एक चीज को चुनना पड़े सो आप क्या चुनोगे? ऑनेस्टी, काइंडनेस, इंटेलिजेंस, ब्रेवरी या फिर सेल्फलेसनेस? 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Nanatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
1: अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान, अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में, कतर में पहली बार।

भाई अब एक ऐसा टॉपिक जिस पर इंडियन ऑडियंस के पास कहानियों की कमी नहीं होगी, आई एम श्योर। शादी का इनविटेशन मिलते ही आपकी पहला रिएक्शन जो है वो क्या होता है? अरे वाह, शादी है। और फिर सवाल शुरू कि वेन्यू कहाँ है, कितने बजे पहुंचना है, आउटफिट क्या पहनेंगे, पार्किंग मिलेगी या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट मेन्यू में क्या है। इंडियन वेडिंग अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस होती है, एक तरह का इमोशनल मोमेंट, फैमिली रियूनियन, डांस सेलिब्रेशन, दूसरी तरफ वो बुफे काउंटर जहां पर लोग स्टार्टर्स के बाद मेन कोर्स तक पहुंचते पहुंचते पूरी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। सो किसी को चाट काउंटर चाहिए, किसी को लाइव पास्ता, किसी को पनीर की क्वालिटी जज करनी है, और कोई तो सिर्फ मीठे के बिना शादी को ऑफिशियली कंप्लीट ही नहीं मानता। लेकिन मजाक से अलग एक सीरियस क्वेश्चन है, वेडिंग का एक सोशल साइड भी है। बहुत बार यही ओकेशंस होते हैं जब दूर रहने वाले रिलेटिव्स मिलते हैं, पुराने दोस्त दोबारा मिलते हैं और फैमिलीज की नई यादें बनती हैं। सो कभी कभी सोशलाइजिंग इतनी लंबी हो जाती है कि

कभी सोचा है जो आपका ऑल टाइम फेवरेट शावरमा है उसका वो आइकॉनिक शेप बनता कैसे है? इसकी कहानी जाती है 19th सेंचुरी टर्की में, जहाँ थिन चिकन पीसेस को वर्टिकल स्क्यूअर पर एक के ऊपर स्टैक करके बनाया जाता था। शेफ बड़े पीसेस ऊपर और छोटे पीसेस नीचे लगाते थे, जिससे ये इन्वर्टेड कोन शेप आता है। और यही धीरे धीरे रोस्ट करने की टेक्निक पॉपुलर हुई एंड बन गई आज के शावरमा की पहचान। चाहे ऑफिस के बाद क्विक बाइट हो, दोस्तों के साथ लेट नाइट क्रेविंग्स या फिर

एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपके फोन में है, ठीक है, और जिसका सॉल्यूशन हम सब कल पर डाल देते हैं। आपकी फोन की गैलरी में कितने फोटोज हैं? 1000, 5000 या फिर इससे भी ज्यादा? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये लाइफ मस्त है। अभी मैं कल एक रील देख रही थी जिसमें एक लड़की इन्फ्लुएंसर है जो बोल रही थी कि यार मेरा 1 TB का फोन फुल हो गया है, मुझे एक्स्ट्रा ये लेना पड़ रहा है, वो लेना पड़ रहा है, हार्ड ड्राइव बनानी पड़ रही है। एंड आई वाज वंडरिंग कि भाई मतलब 1 TB पे फुल हो सकता है? सो गैलरी खोलिए और एक तरफ फैमिली फोटोज, दूसरी तरफ फूड की पिक्चर्स, तीसरी तरफ शॉपिंग स्क्रीनशॉट्स, रैंडम डॉक्यूमेंट्स, OTP के स्क्रीनशॉट्स और वो फोटोज जिनका आपको खुद नहीं पता कि आपने खींची क्यों थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब किसी को एक पर्टिकुलर फोटो दिखानी होती है तब वही फोटो नहीं मिलती और आप कहते हो कि यार एक मिनट अभी देखती हूँ, फिर 2 मिनट स्क्रॉलिंग, 3 मिनट सर्चिंग और आखिर में बोलते हो कि अरे रहने दो यार बाद में भेज दूंगी, बताती हूँ क्या था उसमें। सो कल मैं अपने फोन में एक कार्ड की पिक्चर ढूंढ रही थी, मतलब मुझे अपने एक कार्ड की फोटो चाहिए थी जो मुझे पता है कि मेरे फोन में है पर मुझे मिल नहीं रही थी। सो डिजिटल क्लटर भी एक क्लटर है, फर्क बस इतना है कि फिजिकल कपबोर्ड में जो आप सामने चीजें देखते हैं कि यार ये तो सब मेस्ड है, बिखरा हुआ है, लेकिन ये जो फोन में हजारों फाइल्स चुपचाप जमा होती रहती है उनका हमें पता ही नहीं चलता। फोटोज बेकार भी नहीं होती बट पिक्चर्स हमारे लिए मेमोरीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसे मोमेंट्स जिन्हें हम दोबारा देखना चाहते हैं, इसीलिए डिलीट करने से पहले फोटो का बैकअप रखना समझदारी तो है ही। लेकिन आपकी गैलरी में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सेल्फीज, फूड फोटोज, स्क्रीनशॉट, शॉपिंग पिक्चर्स या बच्चों की फोटोज? सो बताइए मुझे 3311063 पर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जियो बिंदास।
2: टाइम चेक।
3: Brought to you by
2: दानादार पहाड़, the ultimate कतरी adventure, सुखवा के अलखोर।
0: Safari Anniversary Celebration. Today's exclusive deals.
2: Banana Ecuador 1 kg 3.75 Qatari Riyal.
0: Apple Gala Iran 1 kg 3.50 Qatari Riyal.
2: Fresh Prawn Small Saudi Arabia 1 kg 11 Qatari Riyal.
0: Fresh Black Pomfret UAE 1 kg 17.75 Qatari Riyal.
2: Parliament Basmati Rice 4.54 kg 16.75 Qatari Riyal.
0: Sadia Chicken Griller 1400 Gram 10.75 Qatari Riyal.
2: Fresh White Eggs 30 Pieces Tray 9.50 Qatari Riyal.
0: Grill Chicken Full 8.75 Qatari Riyal.
2: Pakistan Beef Boneless 1 kg 33.75 Qatari Riyal.
0: This offer is valid on all Safari outlets on October 15th.
4: Safari, world class shopping experience, Doha, Qatar.
5: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: सो आज है थर्सडे। कतर में शाम से वीकेंड मूड शुरू होने वाला है और जैसे ही वीकेंड आता है हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कहीं जाना है, बाहर खाना खाना है, शॉपिंग करनी है, कुछ नया करना है। और फिर वीकेंड खत्म होने पर बैंक बैलेंस देखकर लगता है ये दो दिन इतने एक्सपेंसिव कैसे हो गए। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो आइडिया डिस्कस करते हैं नो स्पेंड वीकेंड वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर से बिल्कुल बाहर ही नहीं निकले या जरूरत की चीजों पर खर्चा ही ना करो। इसका सिंपल सा मतलब है कि वीकेंड के लिए अननेसेसरी स्पेंडिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करके देखो। घर पर मूवी नाइट रख सकते हो, फैमिली के साथ कोई गेम खेल सकते हो, दोस्तों को कॉल कर सकते हो, उन्हें उनके घर बुला सकते हो, अपने घर जा सकते हो, कहीं पे भी अपनी फेवरेट डिश जो है वो घर पे बना सकते हो या किसी पार्क में वॉक पर जा सकते हो। अब तो मौसम भी बढ़िया हो रहा है। और इसका एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एंगल भी है। कई बार ना हम किसी एक्टिविटी को एंजॉय करने के लिए नहीं बल्कि इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार वीकेंड पर कुछ बड़ा करना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोगों की आउटिंग देखते हो तो आपको लगता है कि हमारा वीकेंड स्पेशल होना चाहिए। लेकिन स्पेशल होने के लिए एक्सपेंसिव होना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छी जो यादें हैं जिनमें ना बड़ी प्लानिंग होती है ना बड़ी स्पेंडिंग होती है, बस अच्छे लोग और अच्छा टाइम होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाहर खाना खाना शॉपिंग करना गलत है। सो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम अपनी चॉइस से खर्च कर रहे हैं या फिर फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से। सो आपका सबसे अच्छा वीकेंड कौन सा था जिसमें आपने बहुत कम पैसे खर्च किए? घर पर कुकिंग, फैमिली गेम नाइट, लॉन्ग वॉक या फिर दोस्तों के साथ बस बातें? बताइएगा जरूर 3311063 पर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
3: Cool song.

देखो भाई, ये आ गया है वीकेंड और ये चैलेंज आप लोगों के लिए है जो सोच कर ये किताबें खरीदते हैं कि भाई पढ़ेंगे लेकिन टाइम नहीं निकाल पाते, तो वीकेंड उसी के लिए तो है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। सो आपके घर में ना ऐसी कितनी किताब है जिन्हें आप बड़ी शौक से खरीदते हो कवर देखकर, या फिर आपको ऐसे किसी ने बोला था कि यार ये किताब बहुत ही अमेजिंग है, इसने आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस किए, और अक्सर कहते हैं कि यार पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन दिन में बहुत बार फोन खोलते हो, नोटिफिकेशंस देखते हो, दूसरा फिर वीडियोस, कमेंट्स और पता नहीं क्या क्या। इसका मतलब नहीं है कि स्क्रीन टाइम बेकार है या हर इंसान को रोज घंटों पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो शुरू करना पड़ेगा किसी छोटी सी चीज से, विच इज वीकेंड पर सिर्फ 20 मिनट्स निकालिए। अब देखो वीकेंड आ रहा है और मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप 20 मिनट बहुत आराम से निकाल सकते हो। किसी किताब, किसी बायोग्राफी, किसी पोएट्री या किसी ऐसी किताब को पढ़िए जिसमें आपकी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो। जरूरी नहीं है कि आप एक सिटिंग में पूरा चैप्टर खत्म कर दो, बस आपको शुरू करना है। रीडिंग का फायदा ना सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, अच्छी किताबें हमें दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से दुनिया देखना सिखाती हैं, फिक्शन हमें कैरेक्टर्स की चॉइसेस समझने में हेल्प करता है, और नॉन फिक्शन हमें किसी नए सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने का भी रास्ता देता है। एंड ट्रस्ट मी, जब आपको किताबें पढ़ना पसंद आने लगेगा ना, तो आपको लगेगा कि यार ये कोई दूसरा वर्ल्ड है। आपके पास कौन सी ऐसी किताब है जिसे आप बहुत टाइम से पढ़ना चाहते हो लेकिन हर बार टाल देते हो? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, 3311 1063 इज माई नंबर, स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

कभी सोचा है जो आपका ऑल टाइम फेवरेट शावरमा है उसका वो आइकॉनिक शेप बनता कैसे है? इसकी कहानी जाती है 19th सेंचुरी टर्की में, जहाँ थिन चिकन पीसेस को वर्टिकल स्क्यूअर पर एक के ऊपर स्टैक करके बनाया जाता था। शेफ बड़े पीसेस ऊपर और छोटे पीसेस नीचे लगाते थे, जिससे ये इन्वर्टेड कोन शेप आता है। और यही धीरे धीरे रोस्ट करने की टेक्निक पॉपुलर हुई एंड बन गई आज

की शावरमा की पहचान, चाहे ऑफिस के बाद क्विक बाइट हो, दोस्तों के साथ लेट नाइट क्रेविंग्स, या फिर किसी नए शहर में अपना फेवरेट फूड स्पॉट ढूंढना। ये सिर्फ फूड नहीं, एक फीलिंग है। विश यू अ हैप्पी शावरमा डे।

0: India's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: शॉपिंग तो सभी करते हैं, पर जब बिना पॉकेट खाली किए ट्रॉली फुल हो जाए तो
2: ये स्टोर लेकर आया है मैजिकल फिगर्स फेस्टिव सेल। यहाँ प्राइसेस पर चलेगा जादू। ग्रोसरी शॉपिंग हो या फेस्टिव शॉपिंग, सब मिलेगा सबसे कम प्राइस में।
1: लेकिन जल्दी कीजिए, क्योंकि ये मैजिकल ऑफर चलेगा सिर्फ 15 से 18 अक्टूबर तक, यानी सिर्फ 4 दिन।
2: तो बस प्लान बनाइए और पूरी फैमिली के साथ पहुँचिए नेस्टो हाइपर मार्केट अलगराफा।
1: नेस्टो, मोर हैप्पीनेस मोर क्वालिटी लोअर प्राइसेस।

0: मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क. कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

और अब आज के शो के आखिर में एक ऐसा सवाल लेकर आई हूँ जो आपकी वीकेंड पर्सनालिटी बता सकता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान। शो का नाम है लाइफ मस्त है। इमेजिन कीजिए आज शाम आप काम खत्म कर चुके हो, आपके सामने पूरा वीकेंड है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन, तैयार हो जाइए, अब सीधे ऑफिस से दोस्तों के पास डिनर का प्लान और बाहर निकल जाइए। दूसरा ऑप्शन है, कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, चेंज कीजिए, फोन को डालिए साइलेंट पर, फेवरेट खाना ऑर्डर कीजिए घर पर और फिर आराम से अपनी फेवरेट सीरीज या फिर किताब के साथ बैठ जाइए। अब बताइए आप किस टीम में हो। बाय द वे दोनों ही बहुत अच्छे साउंड करते हैं। मतलब कभी लगता है कि नहीं यार, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है, हफ्ता हो गया पूरा मिले नहीं है 5 दिन से, और कभी कभी लगता है कि नहीं यार, ये खुद को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोगों को बाहर जाकर एनर्जी मिलती है, उन्हें लोगों से मिलना, नई जगह एक्सप्लोर करना, कुछ नया ट्राई करना पसंद है। सो कुछ लोग पूरे हफ्ते जो है सोशलाइजिंग के बाद शांति से घर रहना चाहते हैं। सो दोनों ही बिल्कुल नॉर्मल है। कभी कभी हम दूसरों के प्लान्स देखकर अपने वीकेंड को जज करने लग जाते हैं, बट ये मत कीजिए। अगर आपको वीकेंड पर बीच जाना है, डिनर आउटिंग पसंद है, टीम आउटिंग पसंद है, तो वो कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार हो गया पूरे हफ्ते अब घर बैठना है, तो आप घर पे भी बैठ सकते हो। यू टेल मी कि आपके इस वीकेंड के क्या प्लान्स हैं। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, कल है फ्राइडे, कल शाम को मैं आपसे मिलूंगी हैप्पी वीकेंड्स लेकर विद लॉट ऑफ न्यू यू नो थिंग्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुपर हिट गानों को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव। बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।

0: Contehen Number One Radio Station. Radio Olive 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-56123.
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: हाय, मैं हूँ सोहाली खान एंड यू आर लिस्टनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: Olive Music Marathon. 1 ghanta, non-stop music.

आप सभी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, जहां पे एक साथ बैठकर गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो धीरे धीरे धीरे हम भी अपने बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कीजिए। 3311063 ये है हमारा नंबर, तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक इंसान के बारे में काफी बढ़िया कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। सो इंडिया में एक भाई साहब थे, उन्होंने 3 साल तक हर दिन 10 रुपए का कॉइन जो है सेव करके रखा और सेव करके 3 साल के बाद उन्होंने 1,23,000 रुपए का एक होंडा एक्टिवा खरीदा। और ये जो ट्रांजैक्शन के लिए लेके गए थे पैसे, वो बेसिकली ये सेव्ड 10 रुपीज कॉइन्स थे और ये बोरी भर के ऐसे पैसे ले गए, उन्होंने दिया वहाँ पे और अपनी स्कूटी निकाली। सोच के देखिए क्या कमिटमेंट है, क्या कंसिस्टेंसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, ये आपको लगेगा कि यार 10 रुपये जो है छोटी बात है, एक दिन में क्या सेव कर पाएंगे, मगर यहाँ पे कंपाउंडिंग, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, इन सब का एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। 10 रुपये रख के वो सेव करते गए 3 साल तक उन्होंने सेव किया, 1,00,000 बन गए। अब सोच के देखिए, अगर हम अपने लाइफ से कुछ अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट कर दें और कंसिस्टेंटली उन्हें सेव करके रखें, तो फिर कितना हम अच्छे तरीके से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास सफारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन टुडेज एक्सक्लूसिव डील्स
1: बनाना इक्वाडोर 1 kg 3.75 कतरी रियाल
0: एप्पल गला ईरान 1 kg 3.50 कतरी रियाल
1: फ्रेश प्रॉन स्मॉल सऊदी अरेबिया 1 kg 11 कतरी रियाल
0: फ्रेश ब्लैक पॉम्फ्रेट यूएई 1 kg 17.75 कतरी रियाल
1: पार्लियामेंट बासमती राइस 4.54 kg 16.75 कतरी रियाल
0: सादिया चिकन ग्रिलर 1400 ग्राम 10.75 कतरी रियाल
1: फ्रेश व्हाइट एग्स 30 पीसेस ट्रे 9.50 कतरी रियाल
0: ग्रिल चिकन फुल 8.75 कतरी रियाल
1: पाकिस्तान बीफ बोनलेस 1 kg 33.75 कतरी रियाल
0: दिस ऑफर इज वैलिड ऑन ऑल सफारी आउटलेट्स ऑन अक्टूबर 15th
2: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर
3: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
4: Only laga aur ho ja recharge.
5: Olive Recharge.
6: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
5: Olive Recharge.
7: This hour is brought to you by
8: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pie free cash vouchers.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे दोस्तों के साथ बैठते हैं, काफी बोर हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बैठे बैठे बोर हुए हैं, करना है कुछ काम, करके अंताक्षरी शुरू कर देते हैं या फिर कुछ ना कुछ और डिस्कशन शुरू करते हैं। मगर जब हम अकेले बैठे हों तब बोरियत आए तो स्क्रोल नहीं करना, मगर कुछ और करना है तो क्या करना है, तो मैं बताता हूँ कुछ सवाल जो है आप ढूंढ सकते हैं, उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है कि लोग प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सरल सवाल है। इसका जवाब जो है कई दफा जो है आपको शॉक कर देता है, अचंभित कर देता है कि अच्छा अच्छा ये भी रीजन हो सकते हैं करके, तो ये जो है आपको एक पर्सपेक्टिव देता है। दूसरा एक और सवाल है जो आप जरूर सर्च कर सकते हैं, वो है कि हम क्यों ब्लश करते हैं, क्यों ब्लशिंग होती है हमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो ब्लश लगा के आते हैं वैसे नहीं, बट नेचुरली कभी कभी हम किसी किसी सिचुएशन में ब्लश कर देते हैं ना। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ कि हम ब्लश करते हैं तो आपको भी कुछ सिचुएशंस याद आ गए होंगे, मुझे तो जरूर आए। सिमिलरली डेजा वू जो होता है वो क्यों होता है, ऐसे कुछ सवाल जो आपको क्यूरियस बनाते हैं, हम उनके बारे में जो है सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये आपको एज ए पर्सन और इंटरेस्टिंग भी बना देंगे, क्योंकि कभी किसी चीज के बारे में अगर कॉन्वर्जेशन छिड़ जाती है तो फिर आप एकदम झकास तरीके से बता सकते हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

of the day. Story of the day. Oh, oh, oh, oh. Story of the day. कभी सोचा है जो आपका ऑल टाइम फेवरेट शावरमा है उसका वो आइकॉनिक शेप बनता कैसे है? इसकी कहानी जाती है 19th सेंचुरी टर्की में, जहां थिन चिकन पीसेस को वर्टिकल स्क्यूअर पर एक के ऊपर स्टैक करके बनाया जाता था। शेफ बड़े पीसेस ऊपर और छोटे पीसेस नीचे लगाते थे, जिससे ये इन्वर्टेड कोन शेप आता है। और यही धीरे धीरे रोस्ट करने की टेक्निक पॉपुलर हुई एंड बन गई आज के शावरमा की पहचान। चाहे ऑफिस के बाद क्विक बाइट हो, दोस्तों के साथ लेट नाइट क्रेविंग्स, या फिर किसी नए शहर में अपना फेवरेट फूड स्पॉट ढूंढना, ये सिर्फ फूड नहीं, एक फीलिंग है। विश यू अ हैप्पी शावरमा डे।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान, अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में, कतर में पहली बार। अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतर, 15 years of excellence and trust, expert coaching for NEET, JEE and CBSE, offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123. Only laga aur ho ja recharge. Olive Recharge. Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas. Olive Recharge.
1: This hour is brought to you by...
2: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pie, free cash vouchers.

कभी कभी जब इंसान प्यार में होता है तो ऐसा होता है कि वो किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पाता, खाना भूल जाता है, सोना भूल जाता है, बस जिससे प्यार करता है उसके बारे में ही सोचता रहता है। तो क्या ये सही में प्यार है या हमारे नर्वस सिस्टम का एक सिग्नल है? आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम प्यार में होते हैं तो हमें लगता है कि भाई हम बस खाना छोड़ देते हैं, नींद छोड़ देते हैं, उसी इंसान का ख्याल हमारे दिल में हमारे दिमाग में रहता है। तो ये जो ऑब्सेशन है ये इंटीमेसी नहीं है, और ये कॉन्स्टेंट मेंटल लूप जो है इसका भी प्रूफ नहीं है कि वो आगे वाला इंसान जो है हमारा ही है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये बताने के लिए कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है काफी ज्यादा एक्टिवेटेड है और वो सेटल डाउन नहीं कर पा रहा है। कभी कभी जो हाईज होते हैं ना उस इमोशन के, वो काफ़ी यूफोरिक लगते हैं, और लोज काफ़ी जो है अनवेयरेबल लग जाते हैं। हम इसे पैशन बोलते हैं, मगर एक्चुअली एक लव जो है इतना स्विंग नहीं करता है, ठीक है। ये एक डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम का वो भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि इंटेंसिटी इज नॉट सेम एज इंटीमेसी, ठीक है। एक रोलर कोस्टर जो है कभी भी आपको घर जैसा नहीं लगेगा। इंटेंसिटी इज अ डिफरेंट थिंग, इंटीमेसी से डिफरेंट थिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कभी कभी एक हाईली एक्टिवेटेड नर्वस सिस्टम को हम बेशुमार प्यार समझ बैठते हैं, और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM. Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today.
1: शॉपिंग तो सभी करते हैं पर जब बिना पॉकेट खाली किए ट्रॉली फुल हो जाए तो
2: नेस्टोल लेकर आया है मैजिकल फिगर्स फेस्टिव सेल यहाँ प्राइसेस पर चलेगा जादू ग्रोसरी शॉपिंग हो या फेस्टिव शॉपिंग सब मिलेगा सबसे कम प्राइस में
1: लेकिन जल्दी कीजिए क्योंकि ये मैजिकल ऑफर चलेगा सिर्फ 15 से 18 अक्टूबर तक यानी सिर्फ 4 दिन
2: तो बस प्लान बनाइए और पूरी फैमिली के साथ पहुँचिए नेस्टो हाइपर मार्केट अलगराफा
1: नेस्टो मोर हैप्पीनेस मोर क्वालिटी लोअर प्राइसेस
3: मैं हूं अनिल कपूर वीडियो ओलिव

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल इन 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे बॉडी के कुछ बढ़िया बढ़िया सिग्नल्स के बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले बात करना चाहूंगा हिकअप्स के बारे में, हिचकियों के बारे में। तो हिचकियां कब आती है हमें? तो यूजुअली हम जब बहुत ज़्यादा एकदम से खा लेते हैं या फिर हम एयर को जो है गल्प कर लेते हैं तब जाके हमें हिचकी आती है। और हिचकी जो है एक सिग्नल है हमारे डायफ्राम के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक लेने के लिए। तो कभी कभी जब हम एकदम से खाना खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो हम हिचकी आने लग जाती है, तो हम पानी पीते हैं, थोड़ा से थम जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, तो हिचकी जो है ऐसे सबसाइड कर जाती है। तो ये एक बॉडी का सिग्नल है हमें ये बताने के लिए कि समटाइम्स यू हैव टू टेक इट स्लो। सिमिलरली एक और ऐसा सिग्नल है जो आपको यही मैसेज देता है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, मगर यहाँ पे गाने इंतजार कर रहे हैं तो गाने प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। थोड़ी देर पहले हम जो है बात कर रहे थे बॉडी के कुछ सिग्नल्स के बारे में, जहां पे हमने हिकअप्स के बारे में, हिचकियों के बारे में जो है बात की थी। सिमिलरली एक और एक बॉडी सिग्नल है जिसके बारे में बताना चाहूंगा, वो है आईज का ट्विच होना। कभी कभी जो है हमारे आईज जो है ट्विच करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी जो है रेस्ट चाहती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि इतना ज्यादा स्ट्रेस या फिर कैफीन या फिर डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाता है कि बॉडी सही में एक ब्रेक चाहती है इन सब चीजों से। तो अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड फील करते हैं तो आपके आईज ट्विच करते हैं। कैफीन का अमाउंट आपके बॉडी में ज्यादा हो जाता हो, आपका आईज जो है वो ट्विच करता है। और डिहाइड्रेशन भी अगर ज्यादा हो जाता है तो भी आईज ट्विच करते हैं। इट मीन्स दैट समथिंग इज रॉन्ग, यू नीड टू स्टेप बैक एंड डू समथिंग अबाउट इट। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Attention Qatar, the all-new GAC GS7 2027 अब Domesco GAC showroom में available है. This premium SUV is perfect for city drives और आपकी outdoor glamping adventures के लिए. Get an incredible 1020 km combined range, plus customize the animated LED headlights, all-new GAC GS7 2027. Starting from just 129,900 Rial.
2: तो इंतजार किस बात का? Book your test drive today. Visit the GAC showroom at East Industrial Road. Call 800-8123।
3: शॉपिंग तो सभी करते हैं, पर जब बिना पॉकेट खाली किए ट्रॉली फुल हो जाए तो
4: नेस्टो लेकर आया है मैजिकल फिगर्स फेस्टिव सेल। यहाँ प्राइसेस पर चलेगा जादू। ग्रोसरी शॉपिंग हो या फेस्टिव शॉपिंग, सब मिलेगा सबसे कम प्राइस में।
3: लेकिन जल्दी कीजिए, क्योंकि ये मैजिकल ऑफर चलेगा सिर्फ 15 से 18 अक्टूबर तक, यानी सिर्फ 4 दिन।
4: तो बस प्लान बनाइए और पूरी फैमिली के साथ पहुँचिए नेस्टो हाइपर मार्केट अलगराफा।
3: नेस्टो, मोर हैप्पीनेस मोर क्वालिटी लोअर प्राइसेस।
0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas. Olive Recharge.
5: This hour is brought to you by.
6: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, वो यही है कि अगर आप अपने ऑफिस टाइम के दौरान मस्ती करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हंसना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, रिचार्ज और रीएनर्जाइज होना चाहते हैं, तो फिर रजिस्टर कीजिए हैप्पीनेस लॉन्च के लिए। मैसेज कीजिए हमें 3311063 पर HL Space अपने कंपनी का नाम, क्योंकि हैप्पीनेस लॉन्ज में हम आपके वर्क प्लेस को विजिट करते हैं, फन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, आपको रिचार्ज और रीएनर्जाइज करते हैं, और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

यार बचपन से अब तक का सवाल था कि कूल बनने के लिए क्या करना है। स्कूल टाइम में कूल बनने के लिए बहुत कोशिश की हमने, गाना वाना गाया, गिटार बजाना आता नहीं था, डांस भी आता नहीं था, तो ज्यादा कूल तो बन नहीं पाए। मगर बहुत सारे डाउट्स थे हमारे पास कि भाई कैसे बने कूल, क्या करना है, क्या करने से हम कूल बन सकते हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में हमने जो है रिसर्च किया, कोशिश की, धक्के खाए, ठोकर मिले, गड्ढे में गिरे। फाइनली 29 साल की उम्र में हम जो है फिगर आउट कर रहे हैं कि एक्चुअली कूल बनने के लिए क्या करना जरूरी है। और ये चीज बहुत सिंपल है, सुनने में आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा मगर ये रियलिटी है। वो यही है कि खुद के साथ का रिश्ता एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ऐसे बड़े होते हैं, टीनेज में होते हैं, फिर एडल्टहुड में आते हैं, फिर जिंदगी जीना शुरू करते हैं, फिर फैमिली बन जाती है, इन सब के बीच में ना अपने साथ एक रिश्ता हम डेवलप नहीं कर पाते, हम अपने बारे में ज्यादा पहचान नहीं पाते, सेल्फ अवेयरनेस नहीं आ पाती। जब हम अपने बारे में अच्छे से पहचान लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, हमारे कमियों को, खामियों को, हमारे स्ट्रेंथ्स को, इन सब चीज़ों को जब हम पहचान लेते हैं, तो एक अलग एक ऑरा जो है हमारे अंदर आ जाता है, हम ऐसे फील करने लग जाते हैं। और जो इंसान खुद से रूबरू हो जाता है, खुद के बारे में जानता है, खुद के बारे में अच्छे से अपनी क्षमताओं के बारे में, अपने कमियों के बारे में, खामियों के बारे में एक समझ रखता है, वो इंसान सही में बहुत सारी दिक्कतों को चेहरे पे एक हंसी के साथ जो है फेस कर लेता है। और इसलिए कूल बनने का सबसे इंपॉर्टेंट मापदंड जो है वो ये है कि अपने साथ एक बहुत ही अच्छा रिश्ता कायम करें। और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Attention Qatar, the all-new GAC GS7 2027 ab Domesco GAC showroom mein available hai. This premium SUV is perfect for city drives aur aapki outdoor glamping adventures ke liye. Get an incredible 1020 km combined range, plus customize the animated LED headlights, all-new GAC GS7 2027. Starting from just 129,900
2: riyal. Toh intezaar kis baat ka? Book your test drive today. Visit the GAC showroom at East Industrial Road. Call 800-8123.
3: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड TNC अप्लाई।
4: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
5: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
6: Hello to all the listeners of

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक स्टेटमेंट के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा जो मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था। दो लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो उनमें से एक साहब ने बोला कि लर्निंग टू लर्न इज इक्वली इंपॉर्टेंट करके, सीखना कैसे है वो सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लोग जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उस चीज को कैसे सीखना है वो सीख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम उस चीज को जो है भूल जाते हैं। इससे एक अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि चूज योर बैटल्स वाइसली करके। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सिलेबस पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके सिलेबस को अच्छे से जानिए। उसके सिलेबस में कौन से चीज़ों के लिए वेटेज ज़्यादा है, कौन से चीज़ों के लिए जो है आप वेटेज कम है, किस तरीके से आप उस चीज़ को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं, ये सब जान के रखेंगे तो आसानी होगी। तो किसी चीज को सीखना कैसे है ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी डीप बात है, सरफेस लेवल भी एकदम से समझ में नहीं आएगी, मगर थोड़ा बैठिए इसके साथ, आपको सही में मजा आ जाएगा इसके बारे में सोच के। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास। शॉपिंग तो सभी करते हैं पर जब बिना पॉकेट खाली किए ट्रॉली फुल हो जाए तो
2: नेस्टो लेकर आया है मैजिकल फिगर्स फेस्टिव सेल। यहाँ प्राइसेस पर चलेगा जादू। ग्रोसरी शॉपिंग हो या फेस्टिव शॉपिंग सब मिलेगा सबसे कम प्राइस में।
1: लेकिन जल्दी कीजिए क्योंकि ये मैजिकल ऑफर चलेगा सिर्फ 15 से 18 अक्टूबर तक यानी सिर्फ 4 दिन।
2: तो बस प्लान बनाइए और पूरी फैमिली के साथ पहुँचिए नेस्टो हाइपर मार्केट अलगराफा।
1: नेस्टो मोर हैप्पीनेस मोर क्वालिटी लोअर प्राइसेस।
3: कॉलिंग ऑल विजनरी ब्रांड्स एंड बिजनेस ओनर्स। इफ यू क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन देन योर बिगेस्ट stage is ready.
4: Arshark Media Management proudly presents the grand third edition of Kids Expo Qatar 2026
3: at QNCC Hall No. 5.
4: This is your ultimate chance to put your brand in the spotlight and connect directly with thousands of families.
3: From breakthrough toys to educational services, showcase your business on Qatar's biggest platform. Opportunities like this don't wait. Book your exhibition space today and take your business to new heights. Kids Expo Qatar 2026, where your innovation meets the future.
5: Pages 10% advance at Joya Lucas to book your favorite jewelry now.
6: Now? We still have time for the festive season.
5: That's exactly why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joya Lucas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advanced booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
7: Safari Anniversary Celebration. Today's exclusive deals.
8: Banana Ecuador 1 kg 3.75 Qatri Riyal.
9: Apple Gala Iran 1 kg 3.50 Qatri Riyal.
8: Fresh Prawn Small Saudi Arabia 1 kg 11 Qatri Riyal.
9: Fresh Black Pomfret UAE 1 kg 17.75 Qatri Riyal.
8: Parliament Basmati Rice 4.54 kg 16.75 Qatri Riyal.
9: Sadia Chicken Griller 1400 gram 10.75 Qatri Riyal.
8: Fresh White Eggs 30 pieces tray 9.50 Qatri Riyal.
9: Grill Chicken Full 8.75 Qatri Riyal.
8: Pakistan Beef Boneless 1 kg 33.75 Qatri Riyal.
9: This offer is valid on all Safari outlets on October 15th.
10: Safari, world class shopping experience, Doha, Qatar.
11: Only laga aur ho ja recharge.
12: Olive Recharge.
0: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
12: Olive Recharge.
13: This hour is brought to you by
14: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Golden Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase par paye free cash vouchers.

रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर radioolive.qa सर्च कीजिए, वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो फॉलो कीजिए और फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सुनते हुए स्टोरी बनाकर डालिए इंस्टाग्राम पे, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कई सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं, आप उसके साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, आपको जीतने के मौके मिलेंगे, वो भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Alif B. Story of the day. Story of the day.
1: कभी सोचा है जो आपका ऑल टाइम फेवरेट शावरमा है उसका वो आइकॉनिक शेप बनता कैसे है? इसकी कहानी जाती है 19th सेंचुरी टर्की में, जहाँ थिन चिकन पीसेस को वर्टिकल स्क्यूअर पर एक के ऊपर स्टैक करके बनाया जाता था। शेफ बड़े पीसेस ऊपर और छोटे पीसेस नीचे लगाते थे, जिससे ये इन्वर्टेड कोन शेप आता है। और यही धीरे धीरे रोस्ट करने की टेक्निक पॉपुलर हुई एंड बन गई आज के शावरमा की पहचान। चाहे ऑफिस के बाद क्विक बाइट हो, दोस्तों के साथ लेट नाइट क्रेविंग्स, या फिर किसी नए शहर में अपना फेवरेट फूड स्पॉट ढूंढना, ये सिर्फ फूड नहीं, एक फीलिंग है। विश यू अ हैप्पी शावरमा डे।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: शॉपिंग तो सभी करते हैं, पर जब बिना पॉकेट खाली किए ट्रॉली फुल हो जाए तो?
2: नेस्टोल लेकर आया है मैजिकल फिगर्स फेस्टिव सेल। यहाँ प्राइसेस पर चलेगा जादू। ग्रोसरी शॉपिंग हो या फेस्टिव शॉपिंग, सब मिलेगा सबसे कम प्राइस में।
1: लेकिन जल्दी कीजिए, क्योंकि ये मैजिकल ऑफर चलेगा सिर्फ 15 से 18 अक्टूबर तक, यानी सिर्फ 4 दिन।
2: तो बस प्लान बनाइए और पूरी फैमिली के साथ पहुंचिए नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा।
1: नेस्टो, मोर हैप्पीनेस, मोर क्वालिटी, लोअर प्राइसेस।
2: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मे बी अ रिक्वायरमेंट, बट विद बीमा यू गेट सो मच मोर। गेट 24/7 रोड साइड असिस्टेंस विद टोइंग, रिकवरी, टायर चेंज, फ्यूल डिलीवरी, बैटरी बूस्ट एंड लॉकआउट सपोर्ट। स्प्लिट योर पेमेंट इनटू 4 इंस्टॉलमेंट्स एंड स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। प्लस गेट अ रिप्लेसमेंट car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
0: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindaas.
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by...
5: It's the season of jewelry and the season of offers at Malabar Gold and Diamonds. Diamond and precious gem jewelry purchase per pie, free cash vouchers.

भाई धीरे धीरे टाटा बाबाई गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो चुके हैं। मगर जाने से पहले यही दरख्वास्त है आपसे कि अब अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सॉन्ग ऑफ द आवर
1: ये गाना
2: करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. टफ काम और भी आसान. कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्नल ग्रुप नाउ.
1: द जॉय वाली दिवाली बाय जॉय आलुकास इज बैक.
2: जी हाँ, हर बार की तरह इट इज द बिगेस्ट एंड बेस्ट डील इन टाउन फॉर ज्वेलरी परचेजेस दिस फेस्टिव सीजन. डायमंड और प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी की खरीद पे पाएं फ्री 24 कैरेट गोल्ड बार्स और कैश वाउचर्स. 8 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड कॉइन्स खरीदें एट एब्सोल्युटली जीरो मेकिंग चार्जेस. मच मोर अवेट्स यू एट जॉय अलकास दिस फेस्टिव सीजन. ऑफर्स केवल 8 नवंबर 2026 तक.
3: TNC अप्लाई. जॉय अलकास, वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर.
4: Lulu Free Trolley 2026 is here. Yes, your entire shopping bill could be absolutely free. Just three simple steps. Shop in the supermarket section at any Lulu branch. Stay tuned as our automated system randomly selects a winner right at checkout. Win! If you are selected, your entire bill is zero. Gone free on the house. Shop at Lulu and win at Lulu. Lulu Hypermarket, where every trolley brings a surprise.

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

साहब क्या वाइब सेट हुई है यार। चार घंटे अपने ही है। आपका आज का दिन कैसा रहा बताइए 3311063 पर। बाकी की बातें मैं वापस लौट के करती हूँ क्योंकि थोड़ी देर में प्रेयर का टाइम होने वाला है, सो वापस आके मिलती हूँ।

0: It's back. It's back. LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Evios.
1: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry, offer valid till 31st October.
2: The Joy Wali Diwali by Joy Alukas is back.
3: जी हाँ, हर बार की तरह इट इज द बिगेस्ट एंड बेस्ट डील इन टाउन फॉर ज्वेलरी परचेजेस दिस फेस्टिव सीजन. डायमंड और प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी की खरीद पे पाएं फ्री 24 कैरेट गोल्ड बार्स और कैश वाउचर्स. 8 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड कॉइन्स खरीदें एट एब्सोल्युटली जीरो मेकिंग चार्जेस. मच मोर अवेट्स यू एट जॉय अलुकास दिस फेस्टिव सीजन. ऑफर्स केवल 8 नवंबर 2026 तक.
2: टीएनसी अप्लाई. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
0: Attention Qatar, the all-new GAC GS7 2027 ab Domesco GAC showroom mein available hai. This premium SUV is perfect for city drives aur aapki outdoor glamping adventures ke liye. Get an incredible 1020 km combined range, plus customize the animated LED headlights, all-new GAC GS7 2027. Starting from just 129,900 riyal.
1: Toh intezaar kis baat ka? Book your test drive today. Visit the GAC showroom at East Industrial Road. Call 800-8123.
4: Safari Anniversary Celebration. Today's exclusive deals.
5: Banana Ecuador 1 kg 3.75 Qatri Riyal.
4: Apple Gala Iran 1 kg 3.50 Qatri Riyal.
5: Fresh Prawn Small Saudi Arabia 1 kg 11 Qatri Riyal.
4: Fresh Black Pomfret UAE 1 kg 17.75 Qatri Riyal.
5: Parliament Basmati Rice 4.54 kg 16.75 Qatri Riyal.
4: Sadia Chicken Griller 1400 gram 10.75 Qatri Riyal.
5: Fresh White Eggs 30 pieces tray 9.50 Qatri Riyal.
4: Grilled Chicken Full 8.75 Qatri Riyal.
5: Pakistan Beef Boneless 1 kg 33.75 Qatri Riyal.
4: This offer is valid on all Safari outlets on October 15th.
6: Safari, world-class shopping experience. Doha, Qatar.
7: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 10

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: डोसा सुखविंदर सिंह की भारी भरकम, शंकर महादेवन की भारी भरकम आवाज ने, एनर्जी वाली आवाज ने जो है इस गाने में जादू कर दिया यार। 5:20 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। सिमरन कौर आपके साथ है। सब लोग बोलते हैं
1: ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है।
0: मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, उल्टा मैनू कॉम्प्लीमेंट लगता यार।

0: वाले सुर नहीं लगते अपने से यार, ना गाने वाले सुर, आहा उहा वाले सुर भी नहीं लगते हैं यार। लेकिन जिंदगी जो है वो कभी कभी आपको इससे सुर जो है नहीं लगाती है, लेकिन आपकी जिंदगी में जो सुर लगते हैं ना वो आप भी नहीं समझ पाते हो यार। आप समझ रहे हो इस टाइम पे मैं क्या बोल रही हूँ? देखो सिमरन कौर के शो में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती नहीं है, बट यस मैं हर रोज आप लोगों से पूछती हूँ कि आपका दिन कैसा रहा। आज मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे दिन के बारे में किसी ने पूछा है।
1: हाय सिमरन, हाय रेडियो वाली, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है विनायक। सिमरन जी, आपने हमसे पूछा था, हम लोगों से आपने पूछा था कि आज का दिन आपका कैसे रहा। हमारा दिन का तो छोड़ो, हमें ये सवाल आपसे करना है, आज का दिन आपका कैसा रहा? क्या किया आपने सुबह से लेकर शाम तक? और आज वीकेंड भी है और धड़कता भड़कता गाना भी हो गया, तो फिर आज क्या स्पेशल है आपके लिए? प्लीज एक लिसनर के तरफ से रिक्वेस्ट है, सो प्लीज आज का दिन आपका कैसा रहा शेयर विद अस। थैंक यू। बाकी सब रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
0: ओके भाई, तो मैं डिटेल में आपसे लीजिए, 10 बजे उठी हूँ मैं सुबह। ओके 10 बजे भाग भाग के, मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है, भाग भाग के मैं रेडी होती हूँ और मैं भाग भाग के रेडी होके नहा के एकदम अभी रेडी होती हूँ, तो मैं रेडी होते होते ब्लैक कॉफी पीती हूँ, घी वाली कॉफी, देसी घी डाल के उसमें, वो पीते पीते फिर मैं हमेशा की तरह भागते हुए ऑफिस जो है वो पहुंची हूँ। नहीं लिटरली भाग के नहीं है, मतलब लेट लेट करके हमेशा मेरे साथ ऐसे हो जाता है। मैं अपने बाल जो है ऑफिस में आके बनाती हूँ, क्योंकि बाल गीले रहते हैं और मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं काम करूँ। ठीक है, बहुत डिटेल में आपको बता रही हूँ मैं। आप जैसे ऑफिस में पहुंची हूँ कि मेरे ब्रेकफास्ट का मैं वेट करने लग जाती हूँ और मैं सर पे चढ़ जाती हूँ कि भाई किधर हो किधर हो किधर हो, क्योंकि मैं ऑन टाइम ही अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती हूँ और मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो मैं 11:30 11:45 के अराउंड करती हूँ, तो मेरा पहला मील ही इतना लेट होता है। तो मैं एकदम जब तक मैं खाना नहीं खा लेती हूँ मैं किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती और कोई मुझे छेड़ता नहीं है, क्योंकि तब तक अपन जो है वो पंजाबी भड़का रहता है उस टाइम पे जब तक उसको खाना नहीं मिलता है। सो उसके बाद मेरा खाना आया, मैंने खाना खाया, आज मैंने ऑमलेट ब्रेड खाया था, तो मेरा ज्यादा दिमाग लग नहीं रहा था। मन था मेरा पैनकेक खाने का, लेकिन मेरा उतना दिमाग नहीं चल रहा था कि मैं ढूंढू कौन सी जगह से मैं पैनकेक्स जो है वो मंगवाऊं। चलो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, वीकेंड है, अब मॉर्निंग की शुरुआत थोड़ी सी अच्छी, मतलब थोड़ी सी लाइट करते हैं। ठीक है, तो मैंने वो खाए और उसके बाद फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया। थोड़ा अपने ऑफिस में टॉयज हैं उसके साथ भी मैंने खेला, क्योंकि वो मेरे को थोड़ा सा, जब काम करते करते मैं थक जाती हूँ तो मेरे ऑफिस में मैंने बहुत सारे टॉयज रखे हुए हैं। ठीक है, तो उनसे खेली मैं। उसके बाद सुपरमार्केट गई, सुपरमार्केट में जाके मैंने अपने लिए प्रोटीन बार लिया, फिर ब्लैक कॉफी के साथ प्रोटीन बार भी खाया। उसके बाद फिर थोड़ी हा ही की ऑफिस में, उसके बाद ये शो करने पहुंच गई हूँ। सो इस तरह से मेरा दिन जो है वो जा रहा है और इस तरह से गया है। आज रात का क्या प्लान है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैं इसी पल में जी रही हूँ, शाम का मुझे, मतलब रात का अभी तक नहीं पता है। एंड ऑफकोर्स आज वीकेंड है, कुछ ना कुछ तो करने वाली हूँ। और डिटेल में चाहिए? नहीं, बस इससे ज्यादा डिटेल में कुछ होगा नहीं दोस्त। आप बताइए आप लोगों का क्या प्लान है और कैसा रहा आपका दिन। 3311063 बजे ओपन।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग तो सभी करते हैं पर जब बिना पॉकेट खाली किए ट्रॉली फुल हो जाए तो
2: नेस्टो लेकर आया है मैजिकल फिगर्स फेस्टिव सेल. यहाँ प्राइसेस पर चलेगा जादू. ग्रोसरी शॉपिंग हो या फेस्टिव शॉपिंग सब मिलेगा सबसे कम प्राइस में.
1: लेकिन जल्दी कीजिए क्योंकि ये मैजिकल ऑफर चलेगा सिर्फ 15 से 18 अक्टूबर तक यानी सिर्फ 4 दिन.
2: तो बस प्लान बनाइए और पूरी फैमिली के साथ पहुँचिए नेस्टो हाइपर मार्केट अलगराफा.
1: नेस्टो मोर हैप्पीनेस मोर क्वालिटी लोअर प्राइसेस.
3: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
4: Yes, Bebo.
3: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
4: Yes.
3: Catch kya hai?
4: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
3: I still can't believe it. No catch.
4: Catches sirf matches mein hote hain, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
5: टफ काम और भी आसान. कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्नल ग्रुप नाउ.
6: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
10: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
11: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: हां जी थोड़ी सी ओवर थिंकिंग जब आप करोगे तो ये गाना उसमें और क्या कहती है आग में घी का काम करेगा.
1: ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा.
0: थोड़ा सा मूर करेंगे आपका लाइट थोड़ी देर में, लेकिन अभी मौसम का हाल अभी कभी बताऊंगी.

हाँ जी आपको पता है बिग बॉस में क्या हो गया था, लड़ाई झगड़ा गुल्लू और नकुल का, और बिग बॉस की अपडेट आपको दे रही हूँ. अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता रहेगा. अस ब्रो अस, ओके. नहीं कर रहे हैं तो दैट्स ओके, आप मजे लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम पास है बहुत ही बढ़िया वाला बिग बॉस का. सो उसमें दोनों की फाइट हो गई थी. आपको पता है कि बिग बॉस में ये है कि भाई अगर आप फिजिकली जो है वो नहीं कर सकते, इसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकते, चांटा वांटा नहीं मार सकते, किसी को हाथ नहीं लगा सकते, तो इसमें इन दोनों की लड़ाई हो गई थी. अब वेट हो रहा था कि भाई क्या डिसीजन होने वाला, तो सारे घर वालों ने बोला भाई दोनों की लड़ाई हो गई है, कैसे गुल्लू पे हाथ उठा दिया नकुल ने, अब तो ये बाहर होगा, तब तक हम सोएंगे नहीं. फिर रात के 2:30 बजे बिग बॉस ने बोला कि भाई नकुल तेरे को घर से बाहर निकाल रहे हैं, इविक्ट कर देते हैं. बट अब यहाँ पर एक और कैच है. सो मैंने जो नोटिस किया, नॉर्मली जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते से जाते हैं, राइट. जो नकुल था वो पहले दूसरे रास्ते से गया जहां से वो आ रहा है, लेकिन वो वापस से घर के अंदर आया, फिर वो दूसरी खिड़की से गया. अब लोग जो है, खिड़की नहीं मतलब दरवाजे से गया, अब लोग जो है मेरी तरह यही सोच रहे हैं कि भाई ये बिग बॉस तथास्तु है, यानी कि हर बंदे को दो चांस मिलते हैं. सो सेकंड चांस में आ सकता है यार वो वापस, क्या होगा वो नहीं पता मुझे, बट I want कि आ जाए यार.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: त्योहारों में अनीता का पूरा परिवार हमेशा कितना अच्छा लगता है ना, उसकी साड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद आती हैं।
2: और पिछले दिवाली में उनके पति ने जो पहना था वो कमाल का था।
1: और उनकी बेटियाँ उन कढ़ाई वाले लहंगे में कितनी खूबसूरत लग रही थीं।
3: पर मम्मी मुझे तो इस बार शरारा सेट चाहिए।
2: लगता है आज मुझे गाड़ी लेकर पूरे शहर के चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: हमें तो बस कल्याण सिल्क्स जाना है, वहाँ पूरे परिवार के लिए त्योहारों का बेहतरीन कलेक्शन है।
4: इस त्योहार सीजन में एक ही छत के नीचे पूरी करे हर ख्वाहिश। आइए कल्याण सिल्क्स, बरवा विलेज, दोहा।
5: It's back. LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Evios.
6: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry, offer valid till 31st October.
7: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit Savify.co today.
8: शॉपिंग तो सभी करते हैं, पर जब बिना पॉकेट खाली किए ट्रॉली फुल हो जाए तो
9: नेस्टोल लेकर आया है मैजिकल फिगर्स फेस्टिव सेल। यहाँ प्राइसेस पर चलेगा जादू। ग्रोसरी शॉपिंग हो या फेस्टिव शॉपिंग, सब मिलेगा सबसे कम प्राइस में।
8: लेकिन जल्दी कीजिए क्योंकि ये मैजिकल ऑफर चलेगा सिर्फ 15 से 18 अक्टूबर तक, यानी सिर्फ 4 दिन।
9: तो बस प्लान बनाइए और पूरी फैमिली के साथ पहुँचिए नेस्टो हाइपर मार्केट अलगराफा।
8: नेस्टो, मोर हैप्पीनेस, मोर क्वालिटी, लोअर प्राइसेस।

वीकेंड का सीन सेट है। अगर आपने अभी तक मुझे गुड इवनिंग का मैसेज नहीं भेजा तो क्या नाराजगी है क्या कोई? 3311106

0: साथ में आप अपने वीकेंड के प्लान्स जो हैं वो भी बता सकते हैं 6:45 स्टूडियो की घड़ी पे।
1: अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुखवा के अलखोर।
0: तो क्या है
2: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: सलमान खान के क्यूट क्यूट वीडियोस जो है वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे कॉफी विद करण सीजन 9। जी हाँ, और ये मतलब बहुत ही कमाल की वीडियो। अभी तक मैंने ये पूरा एपिसोड देखा नहीं है, लेकिन यस अब वीकेंड आ गया तो मैं इसका पूरा एपिसोड जरूर देखने वाली हूँ। और यार सलमान खान से प्यार जो है वो शुरू से रहा ही रहा है। कुछ उन्होंने फिल्में जो है वो अजीब अजीब सी कर दी बीच में, वो जय हो वाली और ये पता नहीं क्या क्या, लेकिन यस प्यार जो है वो उनके लिए हमेशा रहेगा। और ये स्पेशल वाली वीडियो मतलब ये जो वायरल हो रही है उनकी कॉफी विद करण वाली, सो वो भी बहुत ही प्यारी लग रही है यार। सो डेफिनेटली इसको मैं देखने वाली हूँ। अगर आप में से किसी ने कॉफी विद करण सीजन 9 का ये एपिसोड देख लिया तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
3: मेरा बाबा

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: It's back. LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Evios.
2: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry, offer valid till 31st October.
3: The Joy Wali Diwali by Joy Alukas is back.
4: जी हाँ, हर बार की तरह इट इज द बिगेस्ट एंड बेस्ट डील इन टाउन फॉर ज्वेलरी परचेजेस दिस फेस्टिव सीजन। डायमंड और प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी की खरीद पे पाएं फ्री 24 कैरेट गोल्ड बार्स और कैश वाउचर्स। 8 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड कॉइन्स खरीदें एट एब्सोल्युटली जीरो मेकिंग चार्जेस। मच मोर अवेट्स यू एट जॉय अलकास दिस फेस्टिव सीजन। ऑफर्स केवल 8 नवंबर 2026 तक।
3: TNC apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
5: Hi, Radio Olive, 106.3 listener. This is Shah Rukh Khan.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Akshay Kumar.
8: Hi, this is Anushka Sharma.
9: And I'm Ashwin Vasi.
10: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

जी कमरिया हिला दे। सिमरन कौर आपके साथ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमको जो सुनते रहते हैं, जो शुरू से सुन रहे हैं, और किसी ने बहुत कुछ सालों से सुनना स्टार्ट किया, किसी ने कुछ दिनों से सुनना स्टार्ट किया, लेकिन वो सुनेंगे, वो कभी मैसेज नहीं करेंगे। जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं वो हमको रेगुलरली मैसेज करते हैं। तो आज मैं उन लोगों को बोल रही हूं जो कि हमेशा सुनते हैं लेकिन उन्होंने कभी मैसेज करने का सोचा नहीं। तो मैं आपको बोल रही हूं कि क्यों नहीं सोचा, आज सोच लीजिए और सारे बंधन तोड़ के आज मुझे मैसेज भेज दीजिए। हे सिमरन, हैप्पी वीकेंड, व्हाटएवर, जो भी आप बोलना चाहते हो, और भेज दो 3311063 पर। मैं देखती हूँ कि कौन से वो साइलेंट लिसनर है। मुझे बहुत कभी कभी मैसेजेस आते होते हैं ऐसे, जैसे बोलते हैं कि मैं आपका साइलेंट लिसनर हूँ, मैं आपको सुनता हूँ बस, आपको कभी मैसेज नहीं करता। तो ये टाइम है दोस्त, करो 3311063।

0: मैं भी आपकी ओर चल के वापस लौटती हूँ। अपन चक्कर खा के आते हैं गोल चक्कर, और अभी के लिए अगला गाना आपके लिए पेश खिदमत है। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव पर, कहते रहिए जियो बिंदास। खुश रहा करो यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Nanadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
3: सफारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, टुडेज एक्सक्लूसिव डील्स।
4: बनाना इक्वाडोर 1 kg 3.75 कतरी रियाल।
3: एप्पल गला ईरान 1 kg 3.50 कतरी रियाल।
4: फ्रेश प्रॉन स्मॉल सऊदी अरेबिया 1 kg 11 कतरी रियाल।
3: फ्रेश ब्लैक पॉम्फ्रेट यूएई 1 kg 17.75 कतरी रियाल।
4: पार्लियामेंट बासमती राइस 4.54 kg 16.75 कतरी रियाल।
3: सादिया चिकन ग्रिलर 1400 ग्राम 10.75 कतरी रियाल।
4: फ्रेश व्हाइट एग्स 30 पीसेस ट्रे 9.50 कतरी रियाल।
3: ग्रिल चिकन फुल 8.75 Qatri Riyal.
4: Pakistan Beef Boneless 1 kg 33.75 Qatri Riyal.
3: This offer is valid on all Safari outlets on October 15th.
5: Safari, world class shopping experience, Doha, Qatar.
6: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
8: सिमरन के साथ।
9: Zabardast evening, make you drive golden with.
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: हाँ जी बस
1: ऑसम
0: हमारी ऐसे बहुत सारे साइलेंट लिसनर्स के बारे में जो कि हमेशा सुनते तो हैं लेकिन कभी मैसेज नहीं करते हैं. उनको लगता है कि ठीक है सुन रहे हैं लेकिन कभी मैसेज नहीं करना. लेकिन ना जो यहाँ पे बैठ के यू नो रेडियो पर बैठकर आपको यहाँ पर एंटरटेन कर रहा है आपको, वो चाहता है कि यार अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपना नाम लिख के भेजिए, हालचाल पूछिए, अपने बारे में बताइए. तो मैंने आपसे पूछा था, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, कुछ नाम मैं लेना चाहूंगी. सईद जी, तुकाराम जी और उसमें से हुजाइफा जी, थैंक यू सो मच. किसी ने लिखा आप मैरिड हो? अरे नहीं हूं दोस्त, सिर्फ आपके बारे में पूछा था, आप मेरे बारे में क्या ही पूछ रहे हो यार. भीमलाल जी और वहीद अली जी, मिस्टर सामी जी, इमरान जी, वाजिद शेख जी, शिल्पा जी, सब्या जी, उस्मान जी, हबीब जी, सईद जी, थैंक यू सो मच. आप सबने मैसेजेस जो हैं वो लिख के भेजे हैं. और ये भी बोल रहे हैं कि यार आपको सुनते हैं बट कभी मैसेज करने का सोचा नहीं. क्यों नहीं सोचा यार? सो आज मैं आप सबको बोल रही हूं कि जितने भी मेरे साइलेंट लिसनर्स हैं जो कि मुझे सिर्फ सुनते हैं, मुझे मैसेज नहीं करते हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं आपको, आप मुझे आज मैसेज भेजिए. वॉइस नोट भेजेंगे तो और ज्यादा बढ़िया लगेगा, लेकिन अगर आप लिख के भेजना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं 3311063 पर. और बताइए अपने बारे में क्या करते हैं आप यार और कहां से?

0: Olive Bay. Story of the day. Story of the day.
1: कभी सोचा है जो आपका ऑल टाइम फेवरेट शावरमा है उसका वो आइकॉनिक शेप बनता कैसे है? इसकी कहानी जाती है 19th सेंचुरी टर्की में, जहाँ थिन चिकन पीसेस को वर्टिकल स्क्यूअर पर एक के ऊपर स्टैक करके बनाया जाता था। शेफ बड़े पीसेस ऊपर और छोटे पीसेस नीचे लगाते थे, जिससे ये इन्वर्टेड कोन शेप आता है, और यही धीरे धीरे रोस्ट करने की टेक्निक पॉपुलर हुई एंड बन गई आज के शावरमा की पहचान। चाहे ऑफिस के बाद क्विक बाइट हो, दोस्तों के साथ लेट नाइट क्रेविंग्स, या फिर किसी नए शहर में अपना फेवरेट फूड स्पॉट ढूंढना, ये सिर्फ फूड नहीं एक फीलिंग है। विश यू अ हैप्पी शावरमा डे।

जी बंजारे से आप ये गाना सुन रहे हैं। सिमरन 6:51 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। इट्स वीकेंड और वीकेंड पे मेरा

पिया तो नहीं, लेकिन मेरे दोस्त लोगों को मैं जरूर परेशान करती हूँ कि मेरी फोटो खींचो यार, वो भी परेशानी हो गए हैं यार। खैर कोई बात नहीं है, दोस्तों को परेशान करना आपका हक, आपका फर्ज, जितना भी बोल लो अंग्रेजी हिंदी गुजराती में आपका पूरा पूरा होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी फिलहाल के लिए क्या है आज डिकोड करने के लिए? देखो जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा मतलब आप ओवर रिएक्ट कर देते हो और कंट्रोल नहीं आपका रहता, तो इसमें जेंजी लिंगो में एक वर्ड जो है वो यूज होता है क्रैश आउट। मतलब आप क्रैश आउट हो जाते हो, एकदम फैल जाते हो, अपने अपने तरीके से बोले फैल जाते हो आप रहते की तरह, और उसको क्रैश आउट जो है आप वर्ड उसके लिए यूज कर लेते हो, है ना। अभी के लिए और बताओ क्या प्लान है आपके वीकेंड के? थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस के लिए। एक जनाब मुझे लिखते हैं, माई नेम इज साकिब, आपने मेरा नाम नहीं लिया, ले लिया साकिब जी आपका नाम, उस्मान जी आपका नाम भी ले लिया, हबीब जी आपका नाम भी ले लिया, तुकाराम जी कह रहे हैं कि मैं आपको एक बार क्रिस्टल वॉक जब आप गए थे तब मिला था और तब से मैं आपका साइलेंट फैन हूं। अरे मैंने आपसे बात की होगी फॉर श्योर, साइलेंट आप कैसे रह सकते हो? जिसने मेरे से बात कर ली वो साइलेंट रह ही नहीं सकता भाई। बोलने से अपने को प्यार है, बोला करो यार, साइलेंट रह के क्या ही फायदा। तो आज मैं बात कर रही हूँ जितने भी मेरे साइलेंट लिसनर्स हैं जो कि सिर्फ मुझे सुनते हैं, उन्होंने मुझे कभी मैसेज नहीं किया है, तो आज मैसेज करो 3311106 पर। इंतजार कर रही हूँ यार।

ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਹਮ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ। गुलाम फिल्म के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन इस फिल्म का नाम पहले गुलाम नहीं था, ये सोचा गया था कि इस फिल्म का नाम जख्मी रखने वाले हैं, है ना। तो इसमें जो आमिर खान ट्रेन वाला सीन करता है, जब फिल्म की एडिटिंग चल रही थी, सो भाई साहब वो इतना ज्यादा लोग जो थे वो शॉक हो गए थे एडिटिंग के टाइम पे, क्योंकि बस थोड़ा सा ही फासला जो था ट्रेन और आमिर खान के बीच में जो था वो रह गया था, एंड पहली बार आमिर खान ने अपनी आवाज में गाना गाया था, ए क्या बोलती तू, वो वाला, है ना। और उसके साथ साथ अगर बात करें क्लाइमेक्स की, तो क्लाइमेक्स जो था वो 10 से 12 दिन आई गेस 10 से 12 दिन में शूट हुआ था, और उस दिन के लिए, उस लुक के लिए आमिर खान ने 8 दिन तक अपना मुंह नहीं धोया था, क्योंकि उनकी लुक जो थी वो खराब नहीं करना चाहते थे, और एकदम आपकी लुक जो है वो वैसी ही दिखनी चाहिए, और शूट जो है वो आपको पता ही 10-12 दिन में चला था, तो 8 दिन तक उन्होंने अपना फेस जो था वो धोया ही नहीं था। सुषमा सेन को भी रोल आया था रानी मुखर्जी का, लेकिन रानी मुखर्जी, ऐसा बोला जाता है कि सुष्मिता सेन जो है वो, उनका उस टाइम पे विक्रम भट्ट के साथ जो था वो ब्रेकअप हो गया था, एंड दिस एंड दैट, और उसके बाद उन्होंने भट्ट प्रोडक्शन के साथ कभी काम नहीं किया। तो बहुत सारी बातें हैं फिल्म के बारे में, वापस लौट के आपको बताऊंगी। टिल देन चक्को फिर वॉल्यूम कट नहीं होना चाहिए हैगा। हाय हाय हाय, फील ले लो आप।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: त्योहारों में अनीता का पूरा परिवार हमेशा कितना अच्छा लगता है ना, उसकी साड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद आती हैं।
2: और पिछले दिवाली में उनके पति ने जो पहना था वो कमाल का था।
1: और उनकी बेटियाँ उन कढ़ाई वाले लहंगे में कितनी खूबसूरत लग रही थीं।
3: पर मम्मी मुझे तो इस बार शरारा सेट चाहिए।
2: लगता है आज मुझे गाड़ी लेकर पूरे शहर के चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: हमें तो बस कल्याण सिल्क्स जाना है, वहाँ पूरे परिवार के लिए त्योहारों का बेहतरीन कलेक्शन है।
4: इस त्योहार सीजन में एक ही छत के नीचे पूरी करे हर ख्वाहिश। आइए कल्याण सिल्क्स, बरवा विलेज, दोहा।
5: सफारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, टुडेज एक्सक्लूसिव डील्स।
6: बनाना इक्वाडोर 1 kg 3.75 कतरी रियाल।
7: एप्पल गला ईरान 1 kg 3.50 कतरी रियाल।
6: फ्रेश प्रॉन स्मॉल सऊदी अरेबिया 1 kg 11 कतरी रियाल।
7: फ्रेश ब्लैक पॉम्फ्रेट UAE 1 kg 17.75 कतरी रियाल।
6: पार्लियामेंट बासमती राइस 4.54 kg 16.75 कतरी रियाल।
7: सादिया चिकन ग्रिलर 1400 ग्राम 10.75 कतरी रियाल।
6: फ्रेश व्हाइट एग्स 30 पीसेस ट्रे 9.50 कतरी रियाल।
7: ग्रिल चिकन फुल 8.75 कतरी रियाल।
6: पाकिस्तान बीफ बोनलेस 1 kg 33.75 कतरी रियाल।
7: दिस ऑफर इज वैलिड ऑन ऑल सफारी आउटलेट्स ऑन अक्टूबर 15th।
8: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
9: हाय रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज शाहरुख खान।
10: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
11: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
12: सिमरन के साथ।
13: Zabardast evening, make you drive golden with.
14: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
15: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

बारिश में शोला भड़कने लगा, शोले भी भड़का देंगे, बारिश तो करवा दो यार। पता नहीं कतर के कौन कौन से हिस्सों में बारिश हो जाती है और उसके बाद हमको वीडियोस दिखाते हैं, फिर जलन होती है यार। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म गुलाम के बारे में। रानी मुखर्जी की आवाज को मोना घोष ने जो था वो डब किया था, क्योंकि उनकी आवाज बहुत ही ज्यादा यू नो हस्की थी, या फीमेल वॉइस के साथ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था। लेकिन एक टाइम के बाद फिर पता लगता है कि यार रानी मुखर्जी की जो ये हस्की आवाज है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। आती क्या खंडाला, इतना ज्यादा खंडाला इसकी वजह से पॉपुलर हो गया था कि भाई लोग जो है यहाँ पर जाने लग गए थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा भी बहुत मन है खंडाला जाने का, लेकिन मैं कभी गई नहीं हूँ, बट इस गाने की वजह से ही मेरे को खंडाला जो है वो जाना है। और अगर इस फिल्म के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गुलाम का जो था वो 10 से 12 दिन में जो था वो शूट हुआ था, और जो फाइनल सीन था जो है ना, तो जो आमिर खान थे वो हर थोड़े दिन थोड़े सीन के बाद जो थे वो डंबल्स उठा के जो है वो पुशअप करते थे, क्योंकि इस फिल्म में उनकी पूरी ऐसा प्रॉपर बॉडी जो थी वो यू नो दिखाई गई थी। और उसके बाद महेश भट्ट ने ना कभी काम नहीं किया आमिर खान के साथ, क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई ये इंटरफेरेंस बहुत करता है, अपनी बहुत जलाता है यार। सो या ये थी गुलाम से जुड़ी हुई स्पेशल बातें बेबी। बस थोड़ी देर में आपको जलेबी खिलाते हैं, वो भी रबड़ी के।

0: रेडियो ऑलिव करके दे रो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alcohol.
2: टफ काम और भी आसान कार्नल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्नल ग्रुप नाउ
3: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी सीरियसली माही
4: यस बेबो
3: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ
4: यस
3: कैच क्या है
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो
3: आई स्टिल कांट बिलीव इट नो कैच
4: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
6: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन With.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

आपको जो है वो एंजॉय करने का टाइम मिले. जस्ट एंजॉय एंड लिव योर लाइफ. ये संडे मंडे का वेट करना, ये मैं रात को नहीं जग सकता, ये नहीं हो सकता सुबह जल्दी उठना, ये लाइफ की पंगे हैं यार. चलते रहेंगे डार्लिंग.

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: द जॉय वाली दिवाली बाय जॉय आलुकास इज बैक।
2: जी हाँ, हर बार की तरह इट इज द बिगेस्ट एंड बेस्ट डील इन टाउन फॉर ज्वेलरी परचेजेस दिस फेस्टिव सीजन। डायमंड और प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी की खरीद पे पाएं फ्री 24 कैरेट गोल्ड बार्स और कैश वाउचर्स। 8 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड कॉइन्स खरीदें एट एब्सोल्युटली जीरो मेकिंग चार्जेस। मच मोर अवेट्स यू एट जॉय आलुकास दिस फेस्टिव सीजन। ऑफर्स केवल 8 नवंबर 2026 तक।
1: TNC अप्लाई। जॉय आलुकास, वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर।
3: Lulu Free Trolley 2026 is here. Yes, your entire shopping bill could be absolutely free. Just three simple steps. Shop in the supermarket section at any Lulu branch. Stay tuned as our automated system randomly selects a winner right at checkout. Win! If you are selected, your entire bill is zero. Gone free on the house. Shop at Lulu and win at Lulu. Lulu Hypermarket, where every trolley brings a surprise.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joy Alukas. Joy Alukas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: Safari Anniversary Celebration. Today's exclusive deals.
1: Banana Ecuador 1 kg 3.75 Qatri Riyal.
0: Apple Gala Iran 1 kg 3.50 Qatri Riyal.
1: Fresh Prawn Small Saudi Arabia 1 kg 11 Qatri Riyal.
0: Fresh Black Pomfret UAE 1 kg 17.75 Qatri Riyal.
1: Parliament Basmati Rice 4.54 kg 16.75 Qatri Riyal.
0: Sadia Chicken Griller 1400 gram 10.75 Qatri Riyal.
1: Fresh White Eggs 30 Pieces Tray 9.50 Qatri Riyal.
0: Grilled Chicken Full 8.75 Qatri Riyal.
1: Pakistan Beef Boneless 1 kg 33.75 Qatri Riyal.
0: This offer is valid on all Safari outlets on October 15th.
2: Safari, world-class shopping experience. Doha, Qatar.
3: टफ काम और भी आसान कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्नल ग्रुप नाउ
4: हाय मैं हूँ सारिका आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ
7: Zabardast evening. Make your drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ और ऐसे टाइम पे आपको जो है पहले से ही प्रिपेयर जो है रखना, कहीं पे घर पे कहीं पे डैमेज हुआ है, कोई सीलिंग है, कोई ग्लास सीलिंग्स है, वो वाली विंडो है, ये सारी चीजें जो है ना वो कम से कम आप जो है वो सेट करके रखिए कहीं पे, क्योंकि बारिश की वजह से कभी कभी पानी जो है भर जाता है, क्योंकि अपने कदर में उतनी बारिश तो होती नहीं है, जब कभी हो जाए तो फिर हम लोग जो है वो हमारे घर को उतना प्रिपेयर नहीं रखते क्योंकि हमको आदत नहीं है। सो कहां से भी लीक हो सकती हैं चीजें, तो थोड़ा सा अपने घर का, अपने आसपास का जो है वो ध्यान रखिए। बाकी तो आप ही मत रुको, वीकेंड को एंजॉय करो और सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर के दरो जियो बिंदास। अच्छा सुनो, ठीक हो, खुश रहा करो यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
0: देखो, अगर आप में एनर्जी की कमी लग रही थी तो दलेर मेहंदी पाजी का इंजेक्शन लग रहा है आपको।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
2: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit Savify.co today.
3: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

चलने वाले कहाँ रुकते हैं यार, रुकना भी नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसी के लिए रुको जो आपके लिए रुके, और आजकल कोई नहीं रुकता आपके लिए। हाय जज्बाती हो गई हूँ यार मैं तो, वीकेंड का असर रह गया ये मेरे को। सलमान खान है आजकल, मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा ही अचानक से वीडियोज में दिख रहे हैं, अलग अलग जगह पे दिख रहे हैं। अब तो वो पूरा ही आपको दिखने वाले हैं अपनी लाइफ के साथ। सलमान खान ने ऑफिशियली जो है अपना यूट्यूब चैनल 9th October को लॉन्च कर दिया था, और उस उनके चैनल का नाम है बीइंग सलमान खान। सो ये उन्होंने लॉन्च करने के बाद बोला कि उनकी जिंदगी ए टू जेड तक सारा जो मतलब जो भी कंटेंट है ना आपको यहीं पे मिलने वाला है। यूट्यूब वीडियोस के थ्रू वो बताने वाले हैं अपनी लाइफ के बारे में। उन्होंने कुछ शॉर्ट वीडियोस जो है वो जो है इनिशियल कंटेंट जो है वो डाला है अभी। सो या मतलब सलमान खान की लाइफ के बारे में अगर आपको जानना है तो बीइंग सलमान खान जो है उनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय द वे जरूरत नहीं है इनको प्रमोशन की, क्योंकि एक घंटे के अंदर 14,000 सब्सक्राइबर तो ऐसे ऐसे हो गए थे यार। अभी फिलहाल वीकेंड पे कैसे हो यार?

0: Olive B. Story of the day. Story of the day.
1: कभी सोचा है जो आपका ऑल टाइम फेवरेट शावरमा है उसका वो आइकॉनिक शेप बनता कैसे है? इसकी कहानी जाती है 19th सेंचुरी टर्की में, जहाँ थिन चिकन पीसेस को वर्टिकल स्क्यूअर पर एक के ऊपर स्टैक करके बनाया जाता था। शेफ बड़े पीसेस ऊपर और छोटे पीसेस नीचे लगाते थे, जिससे ये इन्वर्टेड कोन शेप आता है। और यही धीरे धीरे रोस्ट करने की टेक्निक पॉपुलर हुई एंड बन गई आज के शावरमा की पहचान। चाहे ऑफिस के बाद क्विक बाइट हो, दोस्तों के साथ लेट नाइट क्रेविंग्स, या फिर किसी नए शहर में अपना फेवरेट फूड स्पॉट ढूंढना, ये सिर्फ फूड नहीं एक फीलिंग है। विश यू अ हैप्पी शावरमा डे।
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: त्योहारों में अनीता का पूरा परिवार हमेशा कितना अच्छा लगता है ना, उसकी साड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद आती हैं।
2: और पिछले दिवाली में उनके पति ने जो पहना था वो कमाल का था।
1: और उनकी बेटियाँ उन कढ़ाई वाले लहंगे में कितनी खूबसूरत लग रही थी।
3: पर मम्मी मुझे तो इस बार शरारा सेट चाहिए।
2: लगता है आज मुझे गाड़ी लेकर पूरे शहर के चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: हमें तो बस कल्याण सिल्क्स जाना है, वहाँ पूरे परिवार के लिए त्योहारों का बेहतरीन कलेक्शन है।
4: इस त्योहार सीजन में एक ही छत के नीचे पूरी करें हर ख्वाहिश। आइए कल्याण सिल्क्स, बरवा विलेज, दोहा।
5: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
6: Attention Qatar, the all new GAC GS7 2027 ab Domesco GAC showroom mein available hai. This premium SUV is perfect for city drives aur aapki outdoor glamping adventures ke liye. Get an incredible 1020 km combined range, plus customize the animated LED headlights. All new GAC GS7 2027 starting from just 129,900
7: riyal. To intezar kis baat ka? Book your test drive today. Visit the GAC showroom at East Industrial Road. Call 800-8123।
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
9: सिमरन के साथ।
10: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव।

0: क्रिकेट पे कदम संभालने की है बेबी। सिमरन कौर तुहाडे नाल क्या कहा
1: सो गया ये जहां सो गया आसमान सो गया ये जहां सो गया आसमान
0: डार्लिंग वीकेंड ते इतनी जल्दी कोई सोंदा नहीं है ते सोना चाहिदा भी नहीं हैगा आ जा प्लेलिस्ट जो है वो मैंने सेट करके रखी है और आने वाले घंटों में भी सेट है। एकदम मूड आपका पार्टी वाला हो जाएगा, वीकेंड वाला हो जाएगा। वीकेंड पे मजे करो यार, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की, ठीक है। जिन्ना स्ट्रेस लै के तुसी अपने वाल चढ़वा लेने हैं फिर क्यों फर्क पैंदा किसी नु कोई फर्क नहीं पैंदा। ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने बारे में सोचो, खुश रहो, जो चीज आपको परेशान करती है ओनू सैड करो, लेफ्ट राइट सेंटर पीछे करो धक्का मार के, ओके। तो आप मिलते हैं शामी 5 बजे सैटरडे नू। मेरी बहुत ज्यादा पंजाबी हो गई है यार, आप ज्यादा समझ नहीं पाते हो। मेरा दिल करता बहुत सारी पंजाबी बोलन का लेकिन मैं बोल नहीं पाती क्योंकि तुसी समझ नहीं पाते है, ओके। अभी के लिए सैटरडे शाम को 5 बजे मिलते हैं जबरदस्त इवनिंग्स में। हैप्पी वीकेंड, खाने में देरो ऐश करते रहो, चेहरे पे वड्डे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सकिलो।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
2: Yes, Bebo.
1: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
2: Yes.
1: Catch kya hai?
2: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
1: I still can't believe it. No catch.
2: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
3: Apne loved ones ko paise bhejna hua और भी इजी कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में फास्ट इजी और रिलायबल विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ
0: यू आर लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास

Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

0: Radio This.
1: Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

6.3 FM. You're listening to Club Olive.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. बिंदास.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास चांदनी रातें।
0: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।